मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज गुरुवार शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि तदनुसार 2 जुलाई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 1260 किलो हर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगा हर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर

0: अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूदेवी भगवती भारती का वंदन। समूह स्वर में सुनते हैं राम प्यारे रसिक का लिखा देशगान।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत भक्ति गीत।

जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना पारंपरिक शिव भजन। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं पंडित किरण मिश्रा का लिखा भक्ति गीत अनूप जलोटा के गायन स्वर में।

0: अनूप जलोटा की आवाज़ में भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। मृदुल गुप्त के वाचन स्वर में सुनते हैं अहंकार विषय का लेख।
1: लोगों में एक आम धारणा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे तक नहीं जाता। यानी अगर कोई जरूरतमंद है तो मदद उसे ही मांगनी पड़ेगी, मदद देने वाला व्यक्ति उसे मदद देने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मदद करने वाला व्यक्ति

0: खुद भी प्रस्ताव देता है कि मैं सहायता कर देता हूँ, लेकिन ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत होती है उसे ही सामने वाले से सहायता मांगनी चाहिए। कई बार समाज में ये भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत होती है वो मदद नहीं मांगता, बल्कि वो उम्मीद करता है कि कोई व्यक्ति खुद आकर उसकी सहायता करे। कुछ अंतर्मुखी और संकोची लोगों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह की सोच की वजह खुद को श्रेष्ठ समझना या घमंड होती है। उसे लगता है कि सहायता मांगने से उसकी तौहीन हो जाएगी। वो समझता है कि ये सामने वाले का कर्तव्य है कि वो खुद आकर ये प्रस्ताव पेश करे कि आपको ज़रूरत है और मैं सहायता करता हूँ। जब ऐसा नहीं हो पाता तो अपने को श्रेष्ठ समझने वाला इंसान नुकसान उठाता है। उसे भले ही नुकसान उठाना पड़ जाए, परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन वो फिर भी सहायता मांगने नहीं जाता। मांगने को वो अपना स्वभाव नहीं मानता। इसमें उसको अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिखती है। क्या इस तरह अभिमान से ग्रस्त लोग ऐसा करके अपना भला करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि घमंड और अकड़ सिर्फ मृत शरीर में ही हो सकती है, जिंदा इंसान में कभी घमंड नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि श्रेष्ठता के भाव के कारण लोगों में दंभ का अंकुर अब धीरे धीरे विशाल पेड़ बन रहा है। ये समाज की एक जटिल समस्या बन रही है और ज्यादातर लोग इसके असर में आ रहे हैं। इसके कई स्तर पर नुकसान होते हैं, मगर लोग इस भाव से अलग नहीं होना चाहते। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान समय में समाज में कई लोग अहंकार के रथ पर सवार हैं, कोई इस रथ से उतरना ही नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले से ज़्यादा अमीर और प्रतिभाशाली है, साथ ही उसकी उपलब्धि सामने वाले से कहीं अधिक है। ये संभव हो सकता है, मगर अभिमान के कारण स्वाभाविक रूप से समाज में ईर्ष्या का प्रादुर्भाव शुरू होता है। लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर जलने लगते हैं, दूसरे को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। शायद यही वजह है कि समाज में आए दिन तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि जब दंभ से किसी को कुछ हासिल नहीं होता तो फिर ये इतना पुष्पित पल्लवित क्यों हो रहा है? आखिर समाज में अभिमान इतना पांव क्यों पसार रहा है? वसुधैव कुटुंबकम वाले भारतवर्ष में लोगों के मन में इतनी संकीर्णता कहां से आ रही है? तरक्की अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी लेकर आती है, तो क्या ये उसका परिणाम है? ये एक मनोविज्ञान है कि लोगों में अक्सर घमंड श्रेष्ठता के भाव से शुरू होता है। यही श्रेष्ठता की ग्रंथि लोगों को एक दूसरे से दूर करने लगती है। फिर धीरे धीरे लोगों के मन में ईर्ष्या पनपने लगती है। लोग दूसरों को दुख तकलीफ समस्या में देखकर खुश होने लगते हैं। पता नहीं समाज में ऐसा कौन सा जहर अपनी जगह बना रहा है जिसके कारण लोगों को दूसरे को तकलीफ में देखकर आनंद की अनुभूति होती है। ये कुंठा नहीं तो और क्या है? अक्सर लोग सफाई पेश करने के तौर पर अभिमान को स्वाभिमान से जोड़ देते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। ये एक तरह का घालमेल है जिसमें स्वाभिमान के नाम पर दंभ से लैस अभिमान को छिपाने की एक विफल कोशिश की जाती है। गर्व और घमंड शब्द आमतौर पर एक जैसे दिखाई जरूर देते हैं, पर इनमें भावों का काफी अंतर है। गर्व को जहां हम लोग सकारात्मक तरीके से लेते हैं, वहीं घमंड को नकारात्मक तरीके से। ऐसे में हमें घमंड को किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर जगह नहीं बनाने देना चाहिए। ये याद रखने की जरूरत है कि घमंड से इंसान का कभी भी भला नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम होने की वजह से कभी अभिमान के भाव से भर जाए तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए हमें उसे इस जंजाल से बचाना चाहिए। घमंड नामक रोग से जितना दूर रहा जाए मनुष्य के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे मनुष्य और मानवीय संवेदनाएं जीवित रहेंगी।
1: मृदुल गुप्त के वचन स्वर में आपने सुना अहंकार विषय का लेख। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन सुरेश वाडेकर के गायन स्वर में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामूहिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: किसान भाइयों, धान फसल में पौध संरक्षण अति आवश्यक होता है। धान फसल में कीटों के कारण 30-35% तक का नुकसान हो जाता है। कीटों द्वारा होने वाली हानि के कारण धान फसल की उत्पादकता कम हो जाती है, इसलिए धान फसल को कीटों से संरक्षण का महत्व बढ़ जाता है। धान की फसल में लगने वाले कीट यदि बात करें तो पौधशाला में लगने वाले कीट थ्रिप्स, जो फसल की कोमल पत्तियों को खुरचता है और कोशिका रस को चूसने लगता है। तरुण पौधों की पत्तियों पर पीले अथवा रजत रंग की धारियों का बनना इसका लक्षण है। पत्तियों के शीर्ष का लपेटना एवं शीर्ष से आधार की ओर सूखना, ये कीट फसल की पौधशाला एवं मुख्य खेत दोनों पर क्षति पहुंचाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए पौधशाला की अवस्था में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। हरा माहो, पत्तियों का शीर्ष से नीचे की ओर पीला पड़ना धान की बीमारियों जैसे टुंगरो वायरस के लिए रोगाणु के संवहन का कार्य करता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों कीट निरोधक किस्म जैसे IR50, CR1009 आदि का उपयोग करना चाहिए। आधारीय मात्रा के रूप में नीम खली 12.5 किलोग्राम प्रति 20 शतांश में प्रयोग करना चाहिए। खेत के चारों तरफ मेड़ों में विद्यमान वनस्पति पर भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। प्रकाश प्रपंजों को खेत में स्थापित करना चाहिए। धान की बंकी, कीट की इल्ली पत्तियों के हरे उत्तकों को खाती है, जिससे पत्तियां सफेदी लिए हुए कागज की भांति हो जाती है। पौधे के शीर्षस्थ भाग की पत्तियों को काटकर कीट नलिकाकार के बेमे बनाकर पौधे के चारों तरफ रहते हैं। नलिकाकार बेमे जल के ऊपर तैरते रहते हैं। किसान भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए प्रभावित खेत से जल का सुरक्षित निकास करना चाहिए। रस्सी खींचकर बेमे का पौधों से इनके वास स्थान से हटाना चाहिए। पौध रोपड़ी के खेत में भरे जल में लगभग 100 मिलीलीटर केरोसिन तेल को मिलाना चाहिए। धान का तना छेदक, पत्ती के शीर्ष बिंदु पर भूरे रंग के अंड समूह का विद्यमान होना कीट की इल्ली पौधे के केंद्रीय प्ररोहों एवं कंसों में छिद्र बनाती है। इसके द्वारा मुख्य प्ररोह पर छिद्र करने एवं काटने से यह सूख जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए कीट निरोधक किस्म जैसे रत्ना, जया, TKM6 को लगाना चाहिए। सघन रोपाई एवं खेत में लगातार पानी नहीं भरना चाहिए। प्रभावित कंसों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। प्रकाश प्रपंजों को स्थापित कर कीटों को आकर्षित कर एवं एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की कटाई मृदा धरातल तक करना चाहिए एवं फसल ठूटों को नष्ट कर देना चाहिए। सैनिक कीट, कीट की सुंडी इल्ली भारी मात्रा में पौधों को काटती है। इसके प्रचंड प्रकोप से खेत पशुओं जैसे चराई की या दिखाई देता है। ये फसल को समूह में रहकर खाती हैं एवं एक खेत से दूसरे खेत में प्रस्थान करते जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए पौधशाला से जल का निकास करना चाहिए। क्लोरोपाइरीफास 20 EC का 80 मिलीलीटर 20 लीटर पानी में घोलकर 8 शतांश में छिड़काव करना चाहिए। जब फसल की सिंचाई करें तो उसमें केरोसिन तेल मिला दें। धान का तना छेदक, पत्ती के शीर्ष बिंदु पर भूरे रंग के अंड समूह का विद्यमान होना कीट की इल्ली पौधे के केंद्रीय प्ररोहों एवं कंसों में छिद्र बनाती है। इसके द्वारा मुख्य प्ररोह पर छिद्र काटने से यह सूख जाता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों कीट प्रतिरोधी किस्म जैसे रत्ना, जया, TKM6 को लगावें। गंगई, कीट की सुंडी वृद्धिक भाग के आधार को खाती है। इसके प्रकोप के फलस्वरूप बाल न बनकर प्याज के पत्ती के आकार की रचना बन जाती है, जिसे सिल्वर सूट या ओनियन सूट कहते हैं। ये कंसों को आक्रमित करते हैं जिससे उनमें बाल नहीं बनते हैं। किसान भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए खेत की प्रारंभिक गहरी जुताई करें। फसल की रोपाई 15 जुलाई से पहले करें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें। अवरोधी प्रजाति जैसे MTU3, शक्ति, विक्रम एवं सुरेखा, महामाया, दंतेश्वरी, इंदिरा, सुगंधित धान 1, इंदिरा सोना आदि को बोएं। फसल काटने के तुरंत बाद खेत की जुताई करें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें जिससे कीट को वैकल्पिक प्रश्रय पौधे पनपने के लिए न मिल सकें। जल्दी पकने वाली किस्मों को लगावें। सिफारिश की गई संतुलित उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग करें। विशेष रूप से पोटास युक्त उर्वरक प्रकाश प्रपंज को स्थापित कर कीट की प्रौढ़ को एकत्रित कर नष्ट कर दें। फसल के 5% कल्ले प्रभावित होने की अवस्था पर कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण होता है। इस तरह किसान भाइयों धान फसल में पौध संरक्षण कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामूहिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़।

दिन के 10 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहयोग विनीतीश गुप्त का, प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की। सुबह 8:30 पर और रात्रि में 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

रात्रि के 10 बजे आप सुन पाएंगे प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जो हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे समसामयिक बातचीत, गुलदस्ता क्रम और गीत संगीत।

शाम 7:21 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय है 7:30। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे समसामयिक कृषि जानकारियां। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श और आज कर सवाल।

सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के 8 बजे। NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है मध्याह्न के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम के 5 बजे।

दिन में 11:05 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि में 9:30 पर।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम माधुरी। शाम 5:30 पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवा सोच और क्रम महफिल।

श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ सादरी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं घसिया लकड़ा और साथियों के स्वर में रिंजा कर्मा गीत के साथ।

मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं डोमकच गीत, गायक कलाकार हिरुंदी कुजोरा साथियों के स्वर में।

लोकगीत कलाकार पीआर भगत और साथियों के स्वर में डोमकच गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इब्राहिम अश का लिखा कलाम भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में आपने सुने इब्राहिम अश्क की लिखी गज़ल। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिले जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत, आवाज कवि प्रदीप की, संगीत निर्देशन अविनाश व्याष्ट का।

आपने सुना कवि प्रदीप का लिखा और गाया गीत। फिल्म थी नागमणि। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश आवेदन आमंत्रित। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट जिला सरगुजा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए कुल 24 रिक्त सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें गणित एवं विज्ञान संकाय के लिए 10 तथा वाणिज्य संकाय के लिए 14 सीटें निर्धारित हैं। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 1 जुलाई 2026 से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट से अथवा विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर 20 जुलाई 2026 तक विद्यालय में सीधे जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची 22 जुलाई 2026 को विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा विद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 25 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी तथा प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंधन ने पात्र एवं इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म CID का गीत। गायक कलाकार हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत OP नैयर का।

चिरमिरी भरतपुर से। जिले के एकलव्य विद्यालयों में कक्षा छठवीं प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथियां घोषित। 30 जून से 6 जुलाई तक विभिन्न स्तरों पर होगी काउंसलिंग। पौड़ी डी स्थित पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में होगा आयोजन। जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथियाँ घोषित कर दी गई हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के निर्देश के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के पारदर्शी व्यवस्थित एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग की व्यवस्था वेब पोर्टल eklavya.cg.nic.in पर की गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार विकासखंड स्तर की काउंसिलिंग 30 जून एवं 1 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। इसके बाद जिला स्तरीय काउंसिलिंग 2 जुलाई, राज्य स्तरीय काउंसिलिंग 3 जुलाई तथा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह एवं प्रवेश दिशा निर्देशों में वर्णित विशेष आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काउंसिलिंग 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं 6 जुलाई 2026 को आरक्षित दिवस रिजर्व डे रखा गया है। सभी स्तरों की काउंसिलिंग का आयोजन PM श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पौड़ी डी विकासखंड खड़गवा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में किया जाएगा। काउंसिलिंग प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित होगी। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म अलबेला का गीत। स्वर और संगीत C. रामचंद्र का, गीत राजेंद्र कृष्ण का।

सी रामचंद्र की आवाज़ में आपने सुना फिल्म अलबीला का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा। समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटला सीतापुर में संचालित घघरी अंबिकापुर एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सहनपुर लुंड्रा वर्तमान में संचालित घघरी अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रावास अधीक्षक पुरुष के एक रिक्त पद की अस्थायी रूप से मानदेय आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से 25 जून 2026 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शासकीय आवासीय संस्थाओं में अधीक्षक पद पर कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर द्वारा सरगुजा के सूचना पटल एवं जिला वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर अंतिम तिथि तक ईमेल आईडी emshkhudaipur@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं मुकेश और शारदा की आवाज़ों में फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का गीत। हजरत जयपुरी की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन।

0: मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। खबर जनसंपर्क अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु प्राक चयन परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा केंद्र प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर ग्राम घंघरी में आयोजित है। उन्होंने बताया कि जिन छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त अंबिकापुर में जमा किया गया है उनका प्रवेश पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर एवं जिन छात्र छात्राओं ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मंडल संयोजक लखनपुर उदयपुर लुंड्रा बतौली सीतापुर एवं मैनपाट में जमा किए वे अपना प्रवेश संबंधित मंडल संयोजकों से 1 जुलाई से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकारें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 8 बजने को हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा।

0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई

0: नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर करती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला

मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली।

0: चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म सौदागर का गीत। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म अवतार का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। गीत संतोष आनंद का, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म दोस्ताना का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत के आखिर में सुनते हैं फिल्म राजा रानी का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

राजा रानी फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम गुंजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका अपना साथी राजीव। दोस्तों, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी परिचय के भी हमारे अपने बन जाते हैं। संगीत भी एक ऐसा ही रिश्ता है। ये न जाति पूछता है, न भाषा, न उम्र। कभी ये हमारी मुस्कान बन जाता है, कभी यादों का सहारा, और कभी कठिन समय में मन को संभालने वाली शक्ति। सच्ची तो कहा गया है, जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ से संगीत बोलना शुरू कर देता है। आज की

जन की शुरुआत हम ऐसे ही एक महान स्वर साधक को स्मरण करते हुए कर रहे हैं जिनकी आवाज़ ने करोड़ों दिलों को छुआ। आज 2 जुलाई हिंदी फिल्म संगीत के लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़ की जयंती है। दोस्तों, हर दौर की अपनी एक आवाज़ होती है। 80 और 90 के दशक में जब रेडियो पर कोई ऊंची जोशीली और भावनाओं से भरपूर आवाज़ गूंजती थी तो श्रोता सहज ही पहचान लेते थे कि ये मोहम्मद अजीज़ हैं। उनकी गायकी में एक अद्भुत शक्ति थी। वे जितनी सहजता से भक्ति गीत गाते थे उतनी ही आत्मीयता से प्रेम गीत और उतनी ही ऊर्जा से भक्ति गीत भी। उनकी आवाज़ में अपनापन था जो सीधे दिल तक पहुँचता था। वे केवल गीत नहीं गाते थे बल्कि हर शब्द में भावनाएं भर देते थे। शायद यही कारण है कि उनके गाए अनेक गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे। संगीत बदलता रहा, दौर बदलते रहे, लेकिन अच्छी आवाज़ और सच्ची अभिव्यक्ति कभी पुरानी नहीं होती। आइए उनकी मधुर यादों को नमन करते हुए सुनते हैं उनका एक यादगार गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म मुद्दत का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता साथियों, किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी सफलता नहीं होती, बल्कि ये होती है कि वो लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाता है। मोहम्मद अजीज़ का जीवन भी संघर्ष, समर्पण और साधना की ऐसी ही कहानी है। पश्चिम बंगाल से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को मेहनत की उड़ान दी और हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया। उनकी आवाज़ उस दौर के बड़े नायकों पर खूब जची, लेकिन इतनी लोकप्रियता के बाद भी उनकी सादगी और विनम्रता हमेशा बनी रही। यही गुण किसी कलाकार को महान बनाते हैं। इसी भावना के साथ सुनते हैं उनका एक और मधुर नगमा।

0: अम्मा।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कलाकार शरीर से भले ही एक दिन विदा हो जाए, लेकिन उसकी कला कभी विदा नहीं होती। जब भी मोहम्मद अजीज़ के गीत बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी आवाज़ में जो मिठास, जो गहराई और जो आत्मीयता थी, वही उन्हें भीड़ से अलग पहचान देती है। आज की नई पीढ़ी भले नए संगीत को सुनती हो, लेकिन जब कभी पुराने गीतों की महफिल सजती है तो मोहम्मद अजीज़ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि समय भले बदल जाए, लेकिन उसकी कला लोगों के दिलों में जीवित रहे। उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके संगीत को सादर नमन करते हैं। और अब वक्त है एक और खूबसूरत गीत का, जो शायद आपके दिल की किसी याद को फिर से ताज़ा कर दे। कार्यक्रम गुंजन का अगला गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, मोहम्मद अजीज़ और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है आग और शोला।

0: मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आपने सुना फिल्म नगीना का गीत। आनंद बख्शी का लिखा नगमा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो।

0: मीडिया वेव और FM पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोता साथियों, सुरों की इस मनभावन दुनिया से अब चलिए प्रकृति की उस अनमोल धरोहर की ओर जिसके बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहते हैं यदि धरती मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान पेड़ों की हरियाली में दिखाई देती है। आइए अब बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह की।

जब कोई छोटा सा बच्चा पहली बार किसी पेड़ की छाया में खेलता है, जब कोई थका हुआ राहगीर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर राहत की सांस लेता है, या जब गर्मी की तपती दोपहरी में ठंडी हवा का झोंका हमें छूता है, तब शायद हम ये महसूस नहीं कर पाते कि इन छोटी छोटी खुशियों के पीछे प्रकृति का कितना बड़ा उपकार छिपा है। पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वे फल भी दूसरों को देते हैं, छाया भी दूसरों को देते हैं और जीवनदायिनी सांसें भी दूसरों के लिए ही संजो कर रखते हैं। यही निस्वार्थ भाव हमें भी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये केवल पौधे लगाने का उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और जिम्मेदारी को व्यक्त करने का अवसर भी है। बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा नगमा, संगीत निर्देशन RD बर्मन का, फिल्म है झील के उस पार।

0: झील के उस पार। फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
0: कहते हैं किसी व्यक्ति का सबसे सुंदर परिचय उसके लगाए गए वृक्ष होते हैं। हो सकता है आज लगाया गया पौधा उसकी छाया हमें कभी न मिले, लेकिन किसी अनजान मुसाफिर को वह राहत अवश्य देगा। यही तो सच्ची सेवा है, बिना किसी अपेक्षा के आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा कर जाना। तो आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें। इस वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसे वृक्ष बनने तक अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी देखभाल अवश्य करेंगे, क्योंकि वृक्ष लगाना आसान है लेकिन उसे जीवन देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अब समय है एक ऐसे गीत का जिसकी मधुर धुनें इस हरियाली के संदेश को और भी खूबसूरत बना दें।

बूंद जो बन गए मोती। फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। श्रोताओं, खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है। खेल हमें सिखाते हैं कि गिरकर भी उठना है, संघर्ष करना है और पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। लेकिन खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों की ये प्रेरक कहानियाँ हमारे घरों तक कौन पहुँचाता है? आइए आज उन शब्दों के शिल्पियों को भी याद करें जो खेलों की हर धड़कन को अपनी कलम से और अपनी आवाज़ से जीवंत बना देते हैं। जब कोई खिलाड़ी वर्षों की कठिन मेहनत के बाद विजय मंच पर तिरंगा लहराता है तब हम उसकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उस मुस्कान तक पहुँचने का सफ़र कितना कठिन रहा होगा ये हमें अक्सर खेल पत्रकारों के रिपोर्टों से ही पता चलता है। यही कारण है कि 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन पत्रकारों को सम्मान देने का अवसर है जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी उपलब्धि, हर संघर्ष और हर प्रेरक कहानी को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ समाज तक पहुंचाते हैं। वे केवल समाचार नहीं लिखते बल्कि खिलाड़ियों के सपने, उनके परिश्रम और उनकी लगन को शब्दों में ढालकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आइए मेहनत, उम्मीद और हौसले के इसी जज्बे के साथ सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत है।

महेंद्र कपूर, मन्ना डे और साथियों के स्वर में आपने सुना फिल्म शोर का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। श्रोता साथियों, जीवन हो या समाज, परिवार हो या राष्ट्र, जहां संवाद जीवित रहता है वहां उम्मीद भी बनी रहती है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने का सबसे सुंदर मार्ग बातचीत और विश्वास ही होता है। इसी सोच के साथ आज के अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं। 2 जुलाई का दिन भारतीय कूटनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1972 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। 1971 के युद्ध के बाद यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और भविष्य के मतभेदों को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इतिहास केवल बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि वो आने वाले कल के लिए भी सीख छोड़ जाता है। शिमला समझौता हमें यही संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, संवाद के द्वार कभी बंद नहीं होने चाहिए। आइए उम्मीद और विश्वास के साथ इसी संदेश के साथ सुनते हैं एक मधुर गीत।

मनहर उदास और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म अमृत का गीत। श्रोता साथियों, जीवन भी एक सुंदर गीत की तरह है। इसमें सुर तभी मधुर बनते हैं जब प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, कर्म के प्रति निष्ठा और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बना रहे। गुंजन की यात्रा यहीं तक। स्वीकार करें राजीव का नमस्कार।

0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में श्री साय ने कहा कि एआई मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में एआई कौशल विकास, स्टार्टअप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स और सुरक्षित एआई नीति के साथ मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारत नेट फेज 3 और सेवा सेतु पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में राज्य में लगभग 1000 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं भारत

फेज थ्री के तहत राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायपुर में आज गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबीजी रामजी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 29.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। साथियों, तापमान सूचना के बाद आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि के 10 बजे आप सुन पाएंगे प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे समसामयिक बातचीत, क्रम गुलदस्ता और गीत संगीत।

शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक चर्चा। कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण समय है शाम 7:30। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे समसामयिक कृषि जानकारियां, साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श।

सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि के 8 बजे। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम के 5 बजे।

दिन में 11:05 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि में 9:30 पर।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम माधुरी। शाम 5:30 पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे युवा सोच और क्रम महफिल।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी और गैर फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली का प्रसारण समय है 6:20। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ सादरी और छत्तीसगढ़ी लोकगीत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय है 7:05। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन।

तो साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम गाँव कर गीत। प्रस्तुति सहयोग विनितेश गुप्त का, प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की।

0: गाँव कर
1: गीत।
2: जम सुनवैया संगी संगवारी औ मीत, मैं विनितेश गुप्त राउर मन भर लेके आ गए हूँ राउर मन के पसंदीदा लोक गीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम गाँव कर गीत। सुनवैया संगवारी हो अषाढ़ कर महीना और देखिए दे बरखा हर गिरिस नहीं तो हमरे किसान मन कर मन में कहब तो देखा एकदम लहर कन उठगीस कि अब हमर काम बुता हर शुरू हो जाही। हमरे काम बुता कर संग संग रेडियो में जब गीत सुनती नहीं तो हमर मन हर आऊ खुश हो जाए और काम में हमर मन हर नगद तो लगे लगे। बाकी देखी आज गाँव कर गीत में सबसे पहला फरमाइश हमर कौन साथी करे, उठावत ही फोन और करत ही उनकर से गोट।

0: हाँ हेलो गांव कर गीत।
1: हाँ दादा, राम राम।
0: राम राम दादा, कौन और कहाँ ले बोला था? तो
1: मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले।
0: गांव कर गीत में राउर के बहुत बहुत स्वागत है। बतावा भाई, ये दे बरखा पानी तो अभी बढ़िया गिरी से एक दो दिन।
1: देख बरखा पानी की बात करी तो भैया, देख काली छमर कदी तनिक बनी गिरे है भैया। ओकर से पहले ना शनिवार के काफी तेज आंधी तूफान घलो आए रहे। ओकर बाद एकदम सप्ताह भर कही तो एकदम तेज धूप खिले रहे, तो पानी तो एकदम नहीं है। काहे कि पानी का गोरा करा था कि पानी बरखा हाली गिरती तो अपन काम धाम की खेती बाड़ी वाला काम ला चालू करते हैं।
0: नहीं भाई, देखिए दे बरखा पानी से खेती पाती हर भाई हमारे दे जुड़ी से, ओकर बिना कहाँ खेती पाती। नहीं
1: देखा है कि पानी गिरे रही तो वही अपन मकई सकाई के जो उड़द वगैरह अरहर के जो बुआई के काम रही तो वह चलत रही, तो ओला भी कर धा रहे हैं। बस धान रोपाई के काम का गोरा है कि पानी गिरे तो चालू कर ही काम बुताला।
0: हाँ भाई, ओकर बार देखी बढ़िया पानी कर भी जरूरत है, तो चिखला हो ही ओकर बादे तो रोपाई ला कर पाब नहीं। हाँ तो तैयारी मन है, बस ये बढ़िया बरखा पानी कर होए कर संभावना है, तो देखी भाई इंतजार तो सब जन करता है, बाकी यही है कि गिरही जल्दी गिरही और बढ़िया हमार खेती पाती हर हो ही।
1: भैया दे का है ना, हमार कति कहीं तो रोपा की जो थारा कर रही ना और एकदम तैयार है भैया, बस पानी के उगरा करत है जम किसान मन।
0: तो राहुल जग सिंचाई कर सुविधा नहीं है भाई चिखला करे बर?
1: जुगाड़ हवे भैया, ये ट्यूबवेल घलो हवे और दिन हमारे लटोरी खदान के पानी घर आवत है तो ओकर भी सुविधा हवे, लेकिन कुछ जगह ऐसा हवे कि जो पानी नहीं पहुंच पाते ओकर खातिर का गोरा करा था।
0: देखिए भाई, बिना बरखा कर पानी कर कई ऐसे जगह रहते ना कि कतरो हमारे जग सुविधा हो, बाकी ये नहीं पूरा पाई नहीं। हाँ तो सुगर गोट बात कर संग देखी गांव कर गीत है चंद्रभान भाई, तो आज कौन सा गीत राउर सुनब तेला बताई।
1: अरे का है भैया, हमन खेती बाड़ी ले काम ले जुड़े हैं और तो यही दे खेती बाड़ी ले जुड़ल गीत बजा दिया। का है कि अब तो आषाढ़ महीना भी घलो चालू होगी से, तो खेती बाड़ी ले जुड़ल गीत अगर सुनते ना तो बन मन हरियर हो जाती।
0: तो लगी भाई राउर के सुनवात ही सुघर कन भाई, लोकगीत खेती पाती और बरखा पानी जुड़ल, और उम्मीद है कि बरखा पानी हर बढ़िया है और राउर गीत मनला सुनत सुनत बढ़िया अपन काम घोटाला करब।

0: हेलो गांवकर गीत।
1: हाँ, गांवकर गीतकार कर रहा हूँ
0: हाँ भैया, कौन और कहाँ ले बोला थी?
1: भैया। मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोलत रहे भैया।
0: मधुसूदन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। राउर कर बरखा पानी गिर गई से काम बुता बतावा कैसे चला थे?
1: हाँ भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया कहे दे, बरखो पानी है दे हमर कति ने अभी गिरी से कायल परसों कही दे। तब कामो बूता हालत बताए गई से धीरे कह वे कति कह देन। स्कूल भी खुल गई से ना, तो लइको मन के पढ़ाई लिखाई कापी किताब पेन भाई सब जायत नहीं।
0: हाँ भाई, देखिए दे बरखा पानी
1: हाँ
0: कर समय हर उसने रहेल कि देखिए दे लड़का बनकर पढ़ाई लिखाई हर भी शुरू होल, खेती
1: हाँ
0: पाती कर काम हर भी।
1: हाँ एकदम लागत दोपहन भैया।
0: तो लगी भाई बताई का काम बुतारा शुरू करे, और रोपा उपा कर तैयारी चलत है कि अभी थारा मन माचिन है?
1: तो भैया अभी नहीं कर रहे हैं, थरा उरा कहीं से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कर अब काहे पानी है बरस गई से,
0: हाँ,
1: अब कर अब थरहा करब। और भाई जैसा देखा वैसा बुनाइयो करब।
0: तो मकई मन कर हाल तो बढ़िया रहीं, तो मन ला कह पारे कि मकई और भी बाची।
1: बाँची से भी है दे का कहब ना, पानी से नहीं बरसत रही कहब, जमीन में ढेरे सुखाए गए रहीं। तो दे अब बरसी से तब दे सब मतलब भिड़ावो नहीं।
0: ठीक है भाई, देखिए अब दे संभावना तो है बढ़िया। अभी एक दो दिन जे का सराउर कहा था कि बढ़िया गिरिस ना, तो हमारे खेती पाती हर भी नगद बढ़िया हो ही नहीं।
1: हाँ।
0: तो लगी भाई सुगर गोट बात कर संग बताई कि आज गांव कर गीत में कौन गीत राउर पसंद करे ही, राउर कर पसंद ना बताई।
1: तो भैया मैं कहत रहे ना, रावरेत के पसंद के गीत रहती बढ़िया, अभी खेती बाड़ी के मौसम के हिसाब से बढ़िया निकलगा गीत बजाए देते।
0: तो लगी भाई राउर पसंद तो हमेशा भाई बढ़िया रहेल, सुघर रहेल, हमार संस्कृति ले जुड़ल, गांव घर ले जुड़ल रहेल, तो वही कैसे गो सुघर का गीत राउर के सुनवात हूँ। उम्मीद है भाई राउर के पसंद आई।
1: हाँ।

0: हेलो गांव कर गीत। राम राम भैया, कौन और कहां ले बोले थी?
1: भैया मैं तुम्हारा न्यादी श्रोता पूरन सिंह बंजारा बात करत रहे भैया, गांव बकलीबा विकास खंड प्रेम नगर जिला सूरज पटिले।
0: बहुत दिन में फोन करे ही पूरन भाई, राउर हाल समाचार न कही सुनाई कैसे ही?
1: हाँ भैया बहुत दिन में कॉल करे हूँ भैया, थोड़ा सा समस्या रही भैया बीच में।
0: हाँ हाँ
1: तो ओकर पटिले कहीं कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते हैं, मोला लाग थे महीना
0: नहीं।
1: एक महीना होगी भैया, ओकर बाद कॉल लगाए हूँ आज।
0: हाँ भाई बहुत सुघर लागिस देखी भाई राउत फोन आई तो बाकी मैं कहत हूँ कि आकाशवाणी से जुड़े रही भाई
1: मैं खास
0: है
1: साल से
0: ना।
1: तो बोला लाख से 15 साल से ऊपर होगी से जुड़े छो कार्यक्रम में सुनते रहते भैया, जिससे थोड़ा बहुत कार्यक्रम के परिवर्तन हो से लेकिन फिर भी अच्छा कार्यक्रम चला थे। अभी की कल हमन गए रहे रामगढ़ उत्सव में, अषाढ़ पहले अषाढ़ के मेला लगते
0: हाँ हाँ
1: तो वहीं गए रहे भैया, तो हमारे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री सामान्य विष्णु देवता जी के भी आगमन हो रही भैया, ओकर भी हम दर्शन करें की दे तो। और भाई अब जहाँ गए रहे श्री राम भगवान के में दर्शन करें वहाँ भी अच्छा से दर्शन करें भैया, और क्या बोलते हैं कि हमारे कति ठीक है भैया, पानी वानी भी अच्छा गिरी से है, एकदम जोरदार पानी गिरी से भैया पूरा खेत खरियान पूरा खुद गई से।
0: तो भाई तो नगद अच्छा बात है हर, तो देखी बरखा पानी कर भाई अगोरा रही जोहत रहन हमान।
1: खेती बाड़ी की तैयारी रही भैया, थरा उरा करे रहे कुछ छिचा उचा करके जमुआत रहे, अभी 2-4 दिन के बाद रोपाई भी चालू हुई भैया जिसे पानी वानी गिरी तो।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और का है कि धान वान भी बुनना बनना रही तो बुनना रही, कुछ पेड़ पौधा भी लगाना रही भैया, वो मन ला भी कल वहाँ से पेड़ पौधा भी लाए हैं भैया जगाए पर कुछ फलदार वृक्ष है भैया। हर साल के भांति भैया इस बार भी 5 पेड़ लेके आए हूँ, जिसमें मैं बहुत 21-22 पेड़ लगा जा रहा हूँ भैया, और यही बार भी 5 पेड़ लेके आया हूँ, तो सोचा था कि यूं लगाऊं भी अच्छा बरसात करी तो।
0: इतना पौधा लगाए ही तो तेमन जियत है पूरन भाई सब मन।
1: हाँ भैया इनमें से ना 2-4 मन मतलब मर गई, लेकिन और बाकी मन अभी से आम है, कटहर है, इमली है, बिही है और लीची है, एमन अभी फल दे भैया फल दे रही इमन में लेके आया हूँ। तो आमा लेके आया हूँ भैया, वो हाइब्रिड वाला आमा है जो काका नाम से बोलते हैं, मतलब पता नहीं है अभी, लेकिन आम से लेके आया हूँ, मुनगा लेके हाइब्रिड वाला मुनगा लेके आया हूँ, बीही लेके आया हूँ, और लीची भी लाया हूँ, तेज पत्ता भी लाया हूँ भैया, और वो वाला
0: बहुत
1: भी जगा हूँ
0: सुंदर
1: जो बरसात का कर ली था।
0: बहुत सुंदर। देखी भाई एक तो मन से हमन फल प्राप्त कर सकत ही और संग संग देखी पर्यावरण पर यह बहुत अच्छा पहल है और राउत बहुत बढ़िया सोचा थी पूरन भाई।
1: हाँ भैया मैं तो कहा है जितना मोर खेत के मेड़ है भैया सब मन में मैं पौधा लगाए कोशिश कर रखू भैया, जैसे मोला कहा है कोई दिन में लकड़ी भी पर्याप्त मिल जाएगी, प्लस में भी मोला भी छाव भी मिल जाएगी, कहा है कि

0: खेती बाड़ी के दिन आ छे कोनो दिन पानी तो कोनो दिन बरखा रहे तो कोनो दिन घाम रहे तो हमें हमला छियाए के भी पूरा पूरा ऐसा मिले भैया और कहाँ धूप में कौन छियाई भैया। तो ओकर चलते मैं
1: बहुत
0: अपन अपन जितना भी खेत सब में पौधा लगाया हूँ भैया। कभी भी हमारे यहाँ आइया हमन खेती बाड़ी में काफी रुचि रखन भैया। जैसे खेती बाड़ी में गर्मी के फसल में लगातन अभी अभी क्या बोलते हैं करेला बरबट्टी भिंडी और क्या बोलते हैं कि लौकी वौकी ये सब के अभी तैयारी चलत है भैया हमारे को। ठीक
1: बहुत सुंदर। हमन भी जरूर आप राउत तरफ पूरन भाई। बाकी
0: जी
1: देखी
0: भैया
1: गांव कर गीत कार्यक्रम है और हमन अपन संस्कृति गांव घर खेती बाड़ी में जुड़ल गीत सुनती गांव कर गीत में। तो बताई आज कौन सा लोक गीत कर फरमाइश राउत करब ये कार्यक्रम में।
0: तो भैया असार के मौसम भी चलत है और खेती बाड़ी के दिन भी चलत है तो मैं ऐसा गाना खेती बाड़ी से जुड़े से कोई अच्छा सा गाना बजा देते हैं भैया तो अच्छा रही भैया।
1: तो बहुत सुगर पसंद है समय कर हिसाब से राउत पसंद करे ही तो लगी पूरन भाई सुनवा थी राउत के राउत पसंद कर सुगर कन लोक गीत।

0: हाँ हेलो गाँव कर गीत।
1: जय जोहार भैया, राम राम का।
0: राम राम, जय जोहार। कौन और कहाँ ले बोला थी भैया?
1: मैं ग्राम पीपल रोड जिला मुंगेली सर गांव ले दीपेश वर्मा बोला था भैया।
0: बहुत बहुत स्वागत है राउर के दीपेश भाई गाँव कर गीत में।
1: धन्यवाद जी।
0: तो बताए भाई, अभी का काम बूता चलत है राउर तरफ?
1: बड़ दिन में कल बारिश गिरे हुई से बढ़िया, और आज सब नांगर बखर मल्ला ट्रेक्टर मल्ला सब ला तैयारी करके बुआई करे तैयारी निकल गए सर खेत में।
0: बहुत सुंदर। देखी भाई, और खेत में जाकर बाद जो हमारे गांव घर का लोक गीत बजेल नहीं तो भाई काम करे कर आनंद हर बढ़ जाए, का कथी राहुल।
1: हाँ बढ़िया सर, का खेती बाड़ी करत करत हमारे लोक गीत मन के गीत और खेती बाड़ी गीत मतलब सुन के बहुत मन प्रसन्न हो जाते,
0: है ना, है
1: और
0: ना, बिल्कुल।
1: हमारे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा हमारे पुराना पुराना लोक गीत मतलब सुने के अवसर भी मिल जाते।
0: हाँ भाई, बहुत सुगर। देखी गीत है हमारे छत्तीसगढ़ का, अपन बहुत सुंदर सुंदर लोक गीत है, मतलब हमन भाई सुना थी और संग संग खेती पाती कर काम करत ही नहीं तो बहुत मन हर आनंदित हो जाए। ताई भाई, आज कौन सा गीत सुनब राउर गाँव कर गीत में?
1: अब खेती बाड़ी दिन आ गए सर, तो ध्रुआ राम मरकाम दुखिया बाई के गीत है, बहुत लोकप्रिय गीत है, जतन करो धरती के संगी जतन करो रे।
0: बहुत सुघर गीत राउर पसंद करे ही तो सुनवा थी राउर के, राउर पसंद कर ये सुघर कर लोक गीत।

0: हाँ हेलो गाँव कर गीत।
1: जयराम भैया, मैं
0: जयराम भैया कौन और कहाँ ले बोले थी?
1: सत्यम क्लब फुलकोना से अरविंद यादव बोला था भैया।
0: बहुत बहुत स्वागत है अरविंद भाई गाँव कर गीत में।
1: धन्यवाद भैया।
0: बतावा का काम बुता चला थे?
1: तो अभी भैया अब कहा कि बरखा भी आएगी भैया, तो खेती बाड़ी का काम जो है वो चालू शुरू है, मेरा कराई बारी ये सब कुछ कुछ मत बुनाई जुदाई भैया चालू है।
0: हाँ।
1: ओके, में हर गांव के हर किसान आदमी सब लगी से भैया।
0: नहीं बढ़िया देखी भाई ये दे बढ़िया जोहत रहे हमरे कि कब बरखा पानी बढ़िया गिरे और खेती
1: हाँ
0: पाती का काम ला शुरू करी। तो
1: जी भैया, जी भैया।
0: राउर के हिसाब से बरखा पानी हो सभी की अभी भी थोड़ा सा कमे है?
1: नहीं अभी तो भैया, अभी तो शुरुआत हुई सफारिश का, अभी तो थोड़ा सा लेट होगी सोएबा, थोड़ा सा अभी हिसाब से थोड़ा सा पहले ही आना चाहिए, अगले वर्ष इतना टाइम तक कुछ खेत रुपाई चालू रही से।
0: है ना। तो नगद अभी देखी भाई तैयारी मन है लेकिन बरखा पानी का अभाव में चट्टी खमरे नहीं भिड़ पाए काम में। नहीं
1: हाँ।
0: तो सुघर बात है भाई लेकिन देखी अदे जोहत है सब झन और उम्मीद है कि बढ़िया बरखा पानी आही और हमारे काम उतार जल्दी जल्दी उसर ही।
1: हाँ। भैया तो ठीक गीत ला मत बजा दिया भैया, आपके पसंद से एक भोजपुरी गीत भैया कोई सब भैया।
0: तो लगी राउर फोन करें भाई राउर के धन्यवाद। अब सुनत ही सोच राउर पसंद कर गीत।

0: हेलो गांव कर गीत।
1: अभी ना मैं महेश्वर यादव ग्राम खलीबा से बोला था
0: हाँ महेश्वर भाई, बतावा का हाल चाल है? बहुत दिन में फोन करे। हाँ भाई,
1: भैया, यही सब खेती पाती में भी रही।
0: तो बरखा पानी खेती पाती कर हिसाब से अभी है कि कैसे है?
1: अभी तो भैया पानी नहीं है, कल परसों पानी तो गिरी से कल
0: हाँ तो
1: यही
0: देखी भाई,
1: पानी।
0: बरखा पानी कम है, बाकी खेती पाती कर काम करत समय हमर अंचल कर, हमर संस्कृति कर, हमर गांव गंवई कर गीत सुने में जो आनंद है ना, तेला भाई जी
1: ओकरा
0: खेती करल ते ही जानल नहीं।
1: जी भैया
0: हाँ तो गांव कर गीत में फोन लगाए ही राउर, तो आज का कहना चाहती बताई। तो
1: भैया, कोई सभी सरगुजिया गाना सुना दिया। हाँ
0: गाना तो भाई सुनावे करूँ, राउर पसंद कर गीत सुनल जाही, बाकी गोट बात में बतावा भाई, खेती पाती कर अभी का स्थिति है, का तैयारी करा था?
1: भैया, तैयारी यही चल रही है। अभी बैगन लगा थी और टमाटर भी लगा थी, और दूसरा चीज भैया मक्का का तैयारी चल रहा है,
0: बहुत
1: उसका
0: सुंदर।
1: धान का
0: देखिए भाई,
1: तैयारी
0: मक्का
1: चल
0: कर
1: रहा
0: हिसाब से
1: है।
0: तो
1: हाँ
0: बढ़िया रही मौसम।
1: जी जी
0: हाँ तो
1: थरा वरा भी करत थी भैया,
0: तो थरा कर हिसाब से पानी है? अच्छा
1: बोर के हिसाब से चल रही थी, ट्यूबवेल की व्यवस्था से। हाँ
0: अच्छा तो राउत जग
1: जी
0: व्यवस्था है मतलब।
1: जी जी
0: चलो महेश्वर भाई, देखिए उम्मीद है कि बरखा पानी हमरे किसान मन कर हिसाब से आए और बढ़िया हमरे खेती पाती में करके लाभ कमाई। बाकी राउत फोन करें अब सुनवा थी राउर के, राउर पसंद कर सुगरकन सरगुजिया लोक गीत।

0: हेलो गांव कर गीत।
1: राम राम भैया।
0: राम राम भैया।
1: अंबिकापुर राजकुमारी भवन आकाशवाणी के निमित्त तो सर
0: बहुत बहुत स्वागत है राउर के राजकुमार।
1: हाँ भैया
0: बताइए क्या कहना चाहब आज।
1: आज तो मैं एक कहूँ तो ज्यादा मौसम और बढ़िया चेंज हुई थे।
0: हाँ
1: गर्मी ले राहत मिली तो किसान मन के चेहरा सिवरी से पानी गिरे थे।
0: एकदम तीन चार दिन ले बढ़िया है देकर दी से मौसम एकदम बदल गया।
1: मतलब बहुत राहत मिली ज्यादा पानी गिरे थे।
0: है ना गर्मी से हलाकान रहे हमरे।
1: हाँ
0: है ना चला भाई के पानी गिरे देखी किसान मन पर बहुत बढ़िया बात है और खेती पाती भाई लग गिन है काम बूता में किसान भाई बहनी मन
1: गिरत रहे पानी तो मन भरी
0: है। नहीं है नहीं बाकी आज गीत कौन सा सुनवाई राउर के।
1: ममता चंद्राकर के तुम्हारे पसंद कोई गाना।
0: ममता चंद्राकर के गाल ये गीत राउर के सुनवा थी। उम्मीद है राउर के बहुत सुगर लगी।

0: हेलो गांव कर गीत।
1: हाँ राम राम भैया।
0: राम राम भैया, कौन और कहाँ ले बोला थी?
1: बलराम सेन दंतेवाड़ा बचेली से बोला था मैं। हाँ
0: बलराम सेन जी, कैसे ही राहू और दंतेवाड़ा में?
1: बढ़िया है भैया, हम अभी हमारे डहाँ अब्बड़ पानी गिरा थे, 3 दिन हो गए लगातार।
0: पूरा छत्तीसगढ़ कर एक ही समाचार है, देखी जम तरफ से फोन आता है मोर जगह गोट करत हो तो सब यही बताते हैं कि 2 से 3 दिन हो गए इस बरखा होत। हाँ ये बहुत सुघर खबर है हमरे किसान मन बर।
1: हाओ
0: है नहीं राउर का काम बूता करती
1: मोर सैलून दुकान है, बाल काटते में
0: है नहीं?
1: हाओ
0: तो देखिए भाई गर्मी से भी हलाकान रहन, कोई भी काम हो परेशान तो रहन चटिक।
1: हाओ
0: बाकी अब कैसे महसूस होते गर्मी के बाद?
1: अब थोड़ा सा ठंडा महसूस मिला था अभी
0: है
1: थोड़ा
0: ना,
1: बहुत।
0: तो ये बरखा कर असर पड़ेल राउर काम बूता में?
1: बहुत पड़ी थी, पड़े पड़ तो
0: है ना,
1: अब बहुत जन मन का है घर से बाहर निकला नहीं पानी बारिश में। हाओ
0: है ना, है ना, यही बात है भाई, बाहर निकल ही तब तो काम बूता हर बाहर कर जो होना है नहीं?
1: हाँ
0: बहुत दूर से राउर फोन लगा ही, बहुत अच्छा लगे हमन ला। राउर मन कौन कौन कार्यक्रम सुनती?
1: गांव का गीत है
0: हाँ
1: और हेलो फ्रेंड है और युवानी है
0: ना,
1: और ईमेल के गुण
0: है ना, है ना, बहुत बहुत सुघर भाई।

0: जितना जितना समय निकाल के राउर मन सुनती है, मतलब बहुत अच्छा लगे सुन के। गीत बताते ना आज कौन सा सुनब बन राम भाई,
1: वाला सुना दी है अपन।
0: तो लगी राउर के सुनवा थी, राउर पसंद कर ये सुघर कन गीत।

0: सुनो या भैया बहनी हो, यही गीत कर साथ आज कर ये कार्यक्रम ला समेटे कर बेरा हो गए है। बाकी जाति जवाती इतना जरूर कहूँ कि अभी हमरे किसान भैया बहनी मन भर ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है, खुश होए कर माहौल है, काबर की बरखा गिरी से। और बरखा जिला हमरे जोहत रथी जोहत रथी जोहत रथी, और जब आइस तो हमन बाँह फैला के अब एक स्वागत करे ही, और उम्मीद है कि ये धार खेती पाती करके भी हमरे अपन उत्पादन ला ज़्यादा ले ज़्यादा बढ़ाब। मैं इंतजार करूँ राउर मन कर कि राउर मन बताब चिट्ठी लिख के ईमेल करके कि राउर मन के ये लोकगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम आज कर कैसन लगिस। आज कर ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहिन परमेंद्र कुमार, और राउर मन से मैं गोट करत रहन विनितेश गुप्त। तो एकरे संग इजाजत दी राउर मन कर लोकगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत से विदा लेकर फेर भेंट होबो। नमस्कार, राम राम।
1: गाँव कर
0: गीत।
2: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम गाँव कर गीत, प्रस्तुति सहयोग विनितेश गुप्त का, प्रस्तुति परमेंद्र कुमार की। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर

0: मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 11:05 हो चुके हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में बोल थे सहीर लुधियानवी के। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा था राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजकुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा ने। मुन्ना भाई श्वणकार, पिंकी श्वणकार, रितेश, कृष्णा और पीहू श्वणकार एवं समस्त परिवार के सभी सदस्य, ये हमारे श्रोता शिव मंदिर हकीकतपुरा उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी थी। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से फरमाइश करता थे शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। रिंगनी से फरमाइश करता थे दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और प्रियंका बंछोर। श्रोताओं, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें पत्र भेजा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद और नीतू वेद ने फरमाइश भेजी है। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, आदर्श नगर मरोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा।

मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत। संगीत है राजेश रोशन का, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें पत्र आया है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से। राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निघवानी, संगीता निभानी, आकाश निभानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्यों ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में फिल्म नदिया के पार का ये गीत। संगीत और बोल है रविंद्र जैन के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म का ये गीत। आवाजें थे जसपाल सिंह और हेमलता की, बोलो संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है दिल्ली शहर मुरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर और आरती ने इसी गीत को सुनना चाहा है। आज़ाद रेडियो लिसनर क्लब वलीदपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि और अनुराग दीप ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए
4: तोरे खोपा माँ चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोताओं, फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें पत्र भेजा है एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र रघुवंशी बबीता सुरेंद्र पूजा विक्की स्वा

चक्रवर्ती, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता नारायण। शांडूर विसवा तालुका नादुरा जिला बुल्ठाना महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं नारायण भाऊ, रक्षा ताई, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक और परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा। लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी, पिपरिया से दुर्गा राम साहू। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं नागिन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, बोल हैं वर्मा मलिक के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नागिन फिल्म का एक गीत। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। वर्मा मलिक के शब्दों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए पत्र भेजा है धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव ने। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से शनूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। अमरपुर पेंड्रा से पत्र आया है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल और लवी श्रीवास्तव का। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फर्ज फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मुकेश कुमार और लता मंगेशकर की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म राम तेरी गंगा मैली के इस गीत के साथ श्रोताओं आज फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिलीव करेंगे।
1: अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति पूरी करने को कहा गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं 3 जुलाई को सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ होगी। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। इस शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की भी समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से मिश्रित खेती अपनाने की अपील की है। कांकेर में किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान धान के साथ दलहन और तिलहन की खेती करें तथा खेतों की मेड़ों पर मुनगा लगाएं। उन्होंने कम लागत और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री नेताम ने खेती के साथ मछली पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जैविक खेती अपनाने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करेगी। वरिष्ठ IPS अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बुधवार को बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक

0: का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सुंदर राज पी का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कलाकारों को शास्त्रीय संगीत और नृत्य, रंग तरंग वाद्यंत्र संगम, रंग परब, नाट्य श्रृंखला और लोक रंग पर्व जैसे आयोजनों में प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। गरियाबंद जिले के अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट खुटगांव पर पुलिस द्वारा की गई दो अलग अलग कार्रवाई में 48 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया गया है। चार पहिया वाहन के जरिए ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहे गांजे की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 चार पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर में कल से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने 48 किलो से अधिक गांजा बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए गए मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 12 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और

0: चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है। और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था।

0: उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दूं?
4: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने

0: हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज,

0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
2: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है
2: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
4: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा इस गद्दी पे बैठ कर
5: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके
4: पास
2: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
6: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।

0: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
1: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
0: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
1: जी, मेरा नाम श्रुति है।
0: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
2: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
3: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
3: अच्छा सर।
4: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
1: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
4: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
4: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
1: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
4: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
1: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
4: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
4: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
4: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीर

0: ने हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
1: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
3: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। स्वागत है साथियों आप सभी का आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन में। आज मैं हूं आपके साथ रिजवान। दोस्तों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है दिल। दोस्तों, दिल इंसान के शरीर का केवल एक अंग नहीं है, बल्कि भावनाओं, संवेदनाओं और रिश्तों का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। दिमाग हमें सही गलत का ज्ञान देता है, लेकिन दिल हमें इंसानियत, प्रेम, करुणा और अपनापन सिखाता है। श्रोताओं, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक साफ और सच्चा दिल है। सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, धन आ जा सकता है, लेकिन एक अच्छा दिल हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहता है। जिस व्यक्ति के दिल में दूसरों के लिए सम्मान, दया और प्रेम होता है, वह हर जगह अपनी अलग पहचान बना लेता है। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का एक गीत, आवाज़ थी SP बालासुब्रमण्यम की। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है दिल। श्रोताओं, दिल की खूबसूरती उसकी कोमलता में होती है। यह दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है, किसी की खुशी में खुश हो सकता है और बिना किसी स्वार्थ के किसी का सहारा बन सकता है। जब दिल में नफरत की जगह प्रेम, ईर्ष्या की जगह सद्भावना और क्रोध की जगह क्षमा होती है, तब इंसान का व्यक्तित्व सचमुच उज्ज्वल हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, आवाजें थी भूपेंद्र और लता मंगेशकर की।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
0: दोस्तों, एक सुंदर दिल वह है जो टूटने के बाद भी दूसरों को खुशियां बांटना नहीं छोड़ता, जो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखता है और अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। ऐसे दिल वाले लोग दुनिया को बेहतर और अधिक मानवीय बनाते हैं।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
2: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
2: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774-230600। नंबर एक बार फिर 07774-230600।
0: दोस्तों, चेहरे की सुंदरता कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन दिल की सुंदरता जीवन भर सम्मान और प्रेम दिलाती है। दिल जितना प्रेम बांटता है उतना ही और अधिक सुंदर होता जाता है। श्रोताओं, दिल जब प्रेम से भर जाता है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। दिल एक ऐसा घर है जहाँ किराए पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए सिर्फ एक ही शख्स का नाम लिखा होता है। दोस्तों, सच्चे दिल का प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह तो आंखों की नमी और चेहरे की मुस्कान से ही सब कह देता है। दिमाग हमेशा फ़ायदे और नुकसान की सोचता है, लेकिन दिल बिना किसी

शर्त के खुद को किसी के नाम कर देता है। महंगे तोहफे तो सिर्फ हाथों को छूते हैं, लेकिन प्रेम से कही गई दो बातें सीधे दिल में उतर जाती है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को हैं, हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह

0: की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण।
2: किसान भाइयों, धान फसल में पौध संरक्षण अति आवश्यक होता है। धान फसल में कीटों के कारण 30-35% तक का नुकसान हो जाता है। कीटों द्वारा होने वाली हानि के कारण धान फसल की उत्पादकता कम हो जाती है, इसलिए धान फसल को कीटों से संरक्षण का महत्व बढ़ जाता है। धान की फसल में लगने वाले कीट यदि बात करें तो पौधशाला में लगने वाले कीट थ्रिप्स, जो फसल की कोमल पत्तियों को खुरचता है और कोशिका रस को चूसने लगता है। तरुण पौधों की पत्तियों पर पीले अथवा रजत रंग की धारियों का बनना इसका लक्षण है। पत्तियों के शीर्ष का लपेटना एवं शीर्ष से आधार की ओर सूखना, ये कीट फसल की पौधशाला एवं मुख्य खेत दोनों पर क्षति पहुंचाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए पौधशाला की अवस्था में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। हरा माहो, पत्तियों का शीर्ष से नीचे की ओर पीला पड़ना धान की बीमारियों जैसे टुंगरो वायरस के लिए रोगाणु के संवहन का कार्य करता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों कीट निरोधक किस्म जैसे IR50, CR1009 आदि का उपयोग करना चाहिए। आधारीय मात्रा के रूप में नीम खली 12.5 किलोग्राम प्रति 20 शतांश में प्रयोग करना चाहिए। खेत के चारों तरफ मेड़ों में विद्यमान वनस्पति पर भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। प्रकाश प्रपंजों को खेत में स्थापित करना चाहिए। धान की बंकी, कीट की इल्ली पत्तियों के हरे उत्तकों को खाती है, जिससे पत्तियां सफेदी लिए हुए कागज की भांति हो जाती है। पौधे के शीर्षस्थ भाग की पत्तियों को काट कर कीट नलिकाकार के बेमे बनाकर पौधे के चारों तरफ रहते हैं। नलिकाकार बेमे जल के ऊपर तैरते रहते हैं। किसान भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए प्रभावित खेत से जल का सुरक्षित निकास करना चाहिए। रस्सी खींचकर बेमे का पौधों से इनके वास स्थान से हटाना चाहिए। पौध रोपणी के खेत में भरे जल में लगभग 100 मिलीलीटर केरोसिन तेल को मिलाना चाहिए। धान का तना छेदक, पत्ती के शीर्ष बिंदु पर भूरे रंग के अंड समूह का विद्यमान होना कीट की इल्ली पौधे के केंद्रीय प्ररोहों एवं कंसों में छिद्र बनाती है। इसके द्वारा मुख्य प्ररोह पर छिद्र करने एवं काटने से यह सूख जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए कीट निरोधक किस्म जैसे रत्ना, जया, TKM6 को लगाना चाहिए। सघन रोपाई एवं खेत में लगातार पानी नहीं भरना चाहिए। प्रभावित कंसों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। प्रकाश प्रपंजों को स्थापित कर कीटों को आकर्षित कर एवं एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की कटाई मृदा धरातल तक करना चाहिए एवं फसल ठूटों को नष्ट कर देना चाहिए। सैनिक कीट, कीट की सुंडी इल्ली भारी मात्रा में पौधों को काटती है। इसके प्रचंड प्रकोप से खेत पशुओं जैसे चराई किया दिखाई देता है। ये फसल को समूह में रहकर खाती हैं एवं एक खेत से दूसरे खेत में प्रस्थान करते जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए पौधशाला से जल का निकास करना चाहिए। क्लोरोपाइरीफास 20 EC का 80 मिलीलीटर 20 लीटर पानी में घोलकर 8 शतांश में छिड़काव करना चाहिए। जब फसल की सिंचाई करें तो उसमें केरोसिन तेल मिला दें। धान का तना छेदक, पत्ती के शीर्ष बिंदु पर भूरे रंग के अंड समूह का विद्यमान होना कीट की इल्ली पौधे के केंद्रीय प्ररोहों एवं कंसों में छिद्र बनाती है। इसके द्वारा मुख्य प्ररोह पर छिद्र काटने से यह सूख जाता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों कीट प्रतिरोधी किस्म जैसे रत्ना, जया, TKM6 को लगावें। गंगई, कीट की सुंडी वृद्धिक भाग के आधार को खाती है।

0: होती है। इसके प्रकोप के फलस्वरूप बाल न बनकर प्याज के पत्ती के आकार की रचना बन जाती है, जिसे सिल्वर सूट या ओनियन सूट कहते हैं। ये कंसों को आक्रमित करते हैं जिससे उनमें बाल नहीं बनते हैं। किसान भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए खेत की प्रारंभिक गहरी जुताई करें, फसल की रोपाई 15 जुलाई से पहले करें, खेत को खरपतवार मुक्त रखें। अवरोधी प्रजाति जैसे MTU3, शक्ति, विक्रम एवं सुरेखा, महामाया, दंतेश्वरी, इंद्रा, सुगंधित धान 1, इंद्रा सोना आदि को बोएं। फसल काटने के तुरंत बाद खेत की जुताई करें, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, जिससे कीट को वैकल्पिक प्रश्रय पौधे पनपने के लिए न मिल सकें। जल्दी पकने वाली किस्मों को लगावें। सिफारिश की गई संतुलित उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग करें, विशेष रूप से पोटास युक्त उर्वरक प्रकाश प्रपंज को स्थापित कर कीट की प्रोड को एकत्रित कर नष्ट कर दें। फसल के 5% कल्ले प्रभावित होने की अवस्था पर कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण होता है। इस तरह किसान भाइयों धान फसल में पौध संरक्षण कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण, विषय था धान में पौध संरक्षण। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं, 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का हमारे आज के घर आंगन कार्यक्रम में। आपके साथ आज की कड़ी में मैं हूं विनीता। स्वीकार कीजिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी के जीवन में कई सारे रिश्ते होते हैं और कुछ रिश्ते जन्म के हैं तो कुछ रिश्ते इस धरती पर आने के बाद हम खुद बनाते हैं। हर रिश्ता कुछ ना कुछ उम्मीद और आस अपने अंदर दूसरों से रखता है। हम इंसानी रिश्तों में कुछ ना कुछ स्वार्थ ज़रूर छिपा होता है। अगर हम इन रिश्तों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं तो ये मजबूत होते चले जाते हैं। ऐसे ही एक रिश्ता हमें अपनी प्रकृति से भी निभाना होगा। पेड़ों को अपना मित्र बनाना होगा, तभी हम सभी सुकून और ताजगी भरा जीवन जी पाएंगे। श्रोताओं, पेड़ जो हमारे जीवन का मूल आधार हैं, इनके होने से हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी हरी भरी रहती है। ये हमसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखते, बस मांगते हैं कि हम इनकी देखभाल और सुरक्षा करें। पेड़ों के प्रति अपनापन और प्रेम होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सभी प्रति माह एक एक पेड़ भी लगाएं तो अपना आसपास हरियाली भरा रख सकते हैं। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी हैं। बहनों, ये हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, औषधि, फल फूल, लकड़ी और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, वन है तो जीवन है। वनों का महत्व गांव हो या शहर, हर जगह बहुत अधिक है। अगर हम इनकी अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। ये न केवल हमें ऑक्सीजन देती है, बल्कि अनेक जीव जंतुओं का भी घर होते हैं। ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायक हैं। श्रोताओं, हम मनुष्यों का वनों से बहुत ही पुराना रिश्ता है। ये हमारे प्राकृतिक आवास थे। अगर वन न रहे तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। वनों से हमें प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है। इनमें हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जो मुख्यतः ईंधन के रूप में जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। हमारे भारत में वनों से लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ मिलती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वनों से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इनसे लघु और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इन वनों से दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनसे अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। वन वर्षा में भी सहायक हैं और इस प्रकार पानी के भूमिगत स्तर में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे भूमि का कटाव भी रुकता है। और श्रोताओं, इन वनों से हमें

इतने लाभ हैं कि इनकी गणना ही नहीं की जा सकती, इसलिए इनके प्रति जागरूक बने, इन अनमोल धरोहर को अपनी संपत्ति समझकर इनकी रक्षा करें और प्रकृति को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें। इन्हीं बातों के साथ आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। आवाज़ है श्रीनिवास की।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अब वक्त हो गया है कि हम चलें हमारे क्रम, गुलदस्ता क्रम में, जिसमें अपनी कविताएं लेकर आई हैं श्रीमती पूनम पांडे। तो आइए सुनते हैं इनकी कविताएं।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं पूनम पांडे आज आप सबके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। पहली रचना के रूप में मैं आप सबके सामने वर्तमान में हुए लखनऊ में जो एक विभत्स हादसा हुआ, अग्निकांड, उसको विषय बनाकर मेरी एक रचना है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आँखों में नमी दिल में मलाल रह जाता है, आँखों में नमी दिल में मलाल रह जाता है, किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है। आँखों में नमी दिल में मलाल रह जाता है, किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है। क्यों नहीं जागते हम आग लगने से पहले, क्यों नहीं जागते हम आग लगने से पहले, बाद में तो सिर्फ रैली और मशाल रह जाता है, बाद में तो सिर्फ रैली और मशाल रह जाता है। किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है, किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है। तड़पते चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने ऊंचाइयों से भी कूद जाते, तड़पते चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने ऊंचाइयों से भी कूद जाते। सपनों के भारत में क्या यही मिसाल रह जाता है, सपनों के भारत में क्या यही मिसाल रह जाता है। किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है, किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है। कहीं लगती है आग, कहीं ढह जाती है इमारत, कहीं लगती है आग, कहीं ढह जाती है इमारत। और बेबस तड़पता हुआ उसके अंदर किसी माँ का लाल रह जाता है, और बेबस तड़पता हुआ उसके अंदर किसी माँ का लाल रह जाता है। किस से पूछें जो मन में एक सवाल रह जाता है। किसी की उम्मीद किसी के अरमान खाक हो जाते हैं, किसी की उम्मीद किसी के अरमान खाक हो जाते हैं। गलती किसी की होती है, किसी के सपने राख हो जाते हैं, गलती किसी की होती है, किसी के सपने राख हो जाते हैं। आग लगती है और लगती रहेगी, आज ये कल वो परसों कोई और जिंदगी जलती रहेगी, कल ये परसों वो जिंदगी जलती रहेगी। हम बेबस बैठे हादसों का यूं ही शोक मनाएंगे, हम बेबस बैठे हादसों का यूं ही शोक मनाएंगे। और फिर किसी नए हादसे पर सब मिलकर सिर्फ आंसू बहाएंगे।

सब मिलकर सिर्फ आंसू बहाएंगे। इस रचना के बाद मैं अपनी एक दूसरी रचना लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज वर्तमान में हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को लेकर जिस तरीके से लापरवाह हो गए हैं, और उस लापरवाही का जो खामियाजा, जो सज़ा हमको भुगतना पड़ेगा, वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाह, बेपरवाह, उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे। उस पर्यावरण को लेकर एक छोटी सी रचना है, धरती को फिर से हरा बनाओ। कट रहे पेड़, जल रहे जंगल, कट रहे पेड़, जल रहे जंगल, कैसे हो धरती पर मंगल। कट रहे पेड़, जल रहे जंगल, कैसे हो धरती पर मंगल। प्यासी धरती धधक रही, बिन पानी के तड़प रही। प्यासी धरती धधक रही, बिन पानी के तड़प रही। सूना आकाश और धरती प्यासी, सूना आकाश और धरती प्यासी, छाई है सब और उदासी। सूना आकाश और धरती प्यासी, छाई है सब और उदासी। सड़क बनाने जंगल काटे, पर्वत नदियों को हम बांटे। सड़क बनाने जंगल काटे, पर्वत नदियों को हम बांटे। प्रकृति की सांसें रोक रहे, वृक्षों को अग्नि में झोंक रहे। प्रकृति की सांसें रोक रहे, वृक्षों को अग्नि में झोंक रहे। वायु बिन जान गंवाएंगे, वायु बिन जान गंवाएंगे, अब चैन कहाँ हम पाएंगे। वायु बिन जान गंवाएंगे, अब चैन कहाँ हम पाएंगे। धरती की रौनक खो रही, धरती की रौनक खो रहे, धरती की रौनक खो रहे, चिरई चुनगुन रो रहे। धरती की रौनक खो रहे, चिरई चुनगुन रो रहे। अब तो जागो निद्रा तोड़ो, अब तो जागो निद्रा तोड़ो, खुद को प्रकृति के संग जोड़ो। अब तो जागो निद्रा तोड़ो, खुद को प्रकृति के संग जोड़ो। अपने हिस्से कुछ पेड़ लगाओ, अपने हिस्से कुछ पेड़ लगाओ, धरती को फिर से हरा बनाओ, धरती को फिर से हरा बनाओ। इन दो रचनाओं के बाद एक और रचना, जिंदगी। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ अनुभव लेते हैं, और कुछ अनुभव सभी लेते हैं, खट्टे मीठे, अच्छे खराब। अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। शीर्षक है ज़िंदगी। समतल कभी पथरीले, समतल कभी पथरीले, कभी सरल कभी लचीले। समतल कभी पथरीले, कभी सरल कभी लचीले, जिंदगी के अनुभव होते हैं कभी मीठे कभी जहरीले। जिंदगी के अनुभव होते हैं कभी मीठे कभी जहरीले। सरल कभी कठिन भी, सरल कभी कठिन भी, खुशियों भरे कभी गमगीन भी। सरल कभी कठिन भी, खुशियों भरे कभी गमगीन भी, जिंदगी मिलती है किसी मोड़ पर, कभी भारी कभी महीन भी। जिंदगी मिलती है किसी मोड़ पर, कभी भारी कभी महीन भी, अर्श पर कभी फर्श पर, अर्श पर कभी फर्श पर, अपकर्ष पर कभी उत्कर्ष पर। अर्श पर कभी फर्श पर, अपकर्ष पर कभी उत्कर्ष पर, जिंदगी मिलती है किसी मोड़ पर, कभी हर्ष पर कभी संघर्ष पर। जिंदगी मिलती है किसी मोड़ पर, कभी हर्ष पर कभी संघर्ष पर, उतार भी और चढ़ाव भी, उतार भी और चढ़ाव भी, अलगाव भी बिखराव भी। उतार भी चढ़ाव भी, अलगाव भी बिखराव भी, जिंदगी होती है किसी मोड़ पर, बहाव भी और ठहराव भी। जिंदगी होती है किसी मोड़ पर, बहाव भी ठहराव भी। अच्छी कभी खराब भी, अच्छी कभी खराब भी, जिंदगी होती है किसी मोड़ पर, साधारण भी और

0: लाजवाब भी। जिंदगी होती है किसी मोड़ पर साधारण भी लाजवाब भी, दर्द कभी आराम भी, दर्द कभी आराम भी, नाम कभी गुमनाम भी, दर्द कभी आराम भी, नाम कभी गुमनाम भी, जिंदगी होती है किसी मोड़ पर रास्ता कभी मकाम भी, जिंदगी होती है किसी मोड़ पर रास्ता कभी मकाम भी, कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू कभी मुस्कान, बेईमान कभी मेहरबान भी, कभी आंसू कभी मुस्कान, बेईमान कभी मेहरबान भी, जिंदगी होती है किसी मोड़ पर आंधी कभी तूफान भी, जिंदगी होती है किसी मोड़ पर आंधी कभी तूफान भी। अपनी इन रचनाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी हम थे गुलदस्ता क्रम में, जिसमें अपनी कविताएं लेकर आई थी पूनम पांडे। अब वक्त हो गया है कि हम चलें हमारे अगले क्रम घरेलू नुस्खे में। और देखिए, खाना बनाते समय हम में से अधिकांश लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर ही देते हैं। ये गलतियां भोजन के स्वाद, बनावट और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए, आज किचन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ नुस्खे हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले कि रायते में हम कई बार ऐसा होता है कि हम रायते में नमक पहले डाल देते हैं, तो ये गलती हम दही में नमक पहले से मिलाकर रख देते हैं और इससे दही पानी छोड़ने लगता है, जिससे रायता पतला हो जाता है। और दही का पानी प्रोटीन, कैल्शियम और कुछ विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, और अधिक पानी निकलने पर इन पोषक तत्वों का कुछ हिस्सा इसमें कम हो सकता है। तो इसके लिए हमें नमक को रायते या दही में परोसने से ठीक पहले मिलाना होगा, तो इसके पोषक तत्व कम नहीं होंगे। और कई बार हम मसाला तड़काते समय कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि तेल या घी को धुआं निकलने तक गर्म करना, ये सही नहीं है। अत्यधिक गर्म तेल मसालों के रंग, स्वाद और सुगंध को नष्ट कर देते हैं। साथ ही मसालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और लाभकारी यौगिक भी नष्ट होने लगते हैं, जिससे कि इनका स्वास्थ्य लाभ कम हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें पिसे मसाले केवल गर्म तेल में डालने होंगे और धुआं निकलते तेल में इसे बिल्कुल भी न डालें। और साथ ही, जैसे कई बार हम रोटी का आटा लगाते समय उसे कई घंटों तक छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है। इससे आटे में ग्लूटेन अधिक विकसित हो जाता है और जिसके कारण रोटियां सख्त और चबाने में मोटी हो सकती हैं। सख्त रोटियां पाचन में असुविधा पैदा करती हैं, इसलिए नरम और फुली हुई रोटियों के लिए आटे को लगभग 30 मिनट तक ही विश्राम देना पर्याप्त है। और इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानी रखकर हम अपने किचन का स्वाद बेहतरीन कर सकते हैं। बातें आगे जारी रखेंगे, लेकिन अब सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, कई बार चावल को हम कई बार पानी से धोने लगते हैं और उसकी सतह पर मौजूद प्राकृतिक स्टार्च की परत काफ़ी हद तक निकल जाती है, जिससे उसकी बनावट प्रभावित हो सकती है। साथ ही घुलनशील कुछ विटामिन और खनिज भी कम हो सकते हैं, विशेषकर अगर चावल फोर्टिफाइड हो। तो चावल को केवल एक बार धोना ही पर्याप्त होता है और इससे इसके पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। चादर और तकिए के कवर को भी हम कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर हमें धोना चाहिए। सामान्य डिटर्जेंट से मशीन या हाथ से धुलाई कर सकते हैं और इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाना भी ज़रूरी है। बारिश के समय काफ़ी हद तक इसमें फफूंद लगने का डर होता है, इसलिए जो लोगों को एलर्जी का कारण बन सकता है, इसलिए इसे गर्म पानी से धोएं और सेहतमंद रहें। और साथ ही कई बार हम देखते हैं कि हम घर के तकियों पर ध्यान नहीं देते, हर 3 से 6 महीने में इन्हें धोना या फिर साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है। फाइबर वाले तकिए मशीन में धोए जा सकते हैं और ऐसे तकिए जिन्हें हम धो नहीं सकते उन्हें धूप में सुखाएं, इससे नमी और दुर्गंध कम हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ चलिए अब सुनते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से।

तो श्रोताओं, इस अंतिम गीत के साथ आज के घरेलू नुस्खे बस यहीं तक, और अब वक्त हो गया है कि कार्यक्रम से भी हम विदा लें। लेकिन जाने से पहले नोट कर लीजिए हमारे घर आंगन मेल का पता। पता है gharanganair@gmail.com। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ मेल के माध्यम से जुड़ें। और इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी विनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडिया वेब और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:40 हुए हैं। पेश है ईमेल की गूंज कार्यक्रम। ईमेल की गूंज सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ रिजवान। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला ईमेल हमें आया है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हमारे श्रोता हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजा है खेलसाय मरकाम नयन प्रकाश, मरकाम शायदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, अमरनाथ, मंगलमोति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, नोहर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम का ईमेल आया है। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से फरमाइश करता है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा। बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजा है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

अभी आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था और गीत को लिखा था इंदिवर ने। श्रोताओं, ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, जोई रिंकी गोस्वामी, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर का ईमेल आया है। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और इब्राहिम ने ईमेल भेजा है। सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से गीत की फरमाइश आई है। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने का ईमेल आया है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह और कुशल शाह का। यह हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। मोताला बाजार से हमारे श्रोता हैं बबलू शेख, शगीर शेख, वजीर सोहेल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने ईमेल भेजा है। उदयपुर से रमेश भारती, विनीत और बाबू भाई ने ईमेल भेजा है। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवनी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और संघई परिवार के सभी सदस्यों ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं आशा फिल्म का एक गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म आशा का ये गीत। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है तेलंगाना निज़ामाबाद से। शेख उल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुना, दानिश आसिफ शेख का। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद ने ईमेल भेजा है। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद सबीहा मिखाइल और जैनम ने गीत सुनना चाहा है। बोरसरा नीला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने गीत सुनना चाहा है। बैलाडीला बस्ता छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और परिवार के सभी सदस्यों ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं अर्पण फिल्म का एक गीत। आवाज़ हैं सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर की। बोल हैं आनंद बख्शी के। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अर्पण फिल्म का एक गीत। आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम में अंतिम गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय ने। उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने गीत सुनना चाहा है। छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म अमर अकबर एंथोनी फिल्म से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। बोल हैं आनंद बख्शी के।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार का अंक कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल,

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने

0: आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
2: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
2: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया

0: कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHAIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। मीडियम वेव और एफएम

बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 2:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए गीत गंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलत अजीज की गई इस खूबसूरत गजल के साथ, तो सुनिए तलत अजीज को।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरी हरन की गाई ये गजल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हरी हरन की गाई ये गजल। आप लुत्फ उठा रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को इस गजल में। आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में आप सुनिए फाल्गुनी पाठक का गाया ये एल्बम गीत।

फाल्गुनी पाठक के गाए इस एल्बम गीत के साथ आज गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का समापन यहीं होता है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सभा समाप्त करने से पहले आइए हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण।

श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोंठ के साथ। 5:05 पर आप सुनिएगा गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण करेंगे 5:30 पर। 6:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली हम आपको सुनवाएंगे 6:20 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी होगा 6:30 पर। 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण करेंगे 7:20 पर। साथ ही होगी किसानवाड़ी 7:30 पर। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुनिएगा 9:15 पर। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 10:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

9.09 MHz हर्ट्ज, 1260 KHz और FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मीडिया वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडिया वेव 1260 KHz और FM बैंड 100.2 MHz पर सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल

0: संख्या 51 है।
1: ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है।
1: ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है।
1: ये पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 23 है।
1: ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, अस्कला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, ढेकी डोली, एरंड, नवापारा, गढ़गांव, बरडांड, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है।
1: ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़ेकेला, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है।
1: ये कूड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 13 है।
1: ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है।
1: ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है।
1: ये चारमार, नागदरहा, पंडरीपानी, चिमटापानी, बंगुरसिया, जुनवानी, भैंस गढ़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है।
1: ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है।
1: ये मोहदा, सैहा भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है।
1: ये ओड़, ताराझर, डडई पानी, होलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकी पारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार
3: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी एवं गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए पहले सुनते हैं जगदीश सिंह के स्वर में सुदर्शन फकीर की रचना। संगीत निर्देशन जगदीश सिंह का है।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने राम भजन सुना। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी के स्वर में फिल्म केदारनाथ से लिया गया ये गीत। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और संगीत निर्देशन अमित त्रिवेदी का है।

मन मैला और तन को धोए। हरिओम शरण के स्वर में अभी आपने ये भजन सुना। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं अशोक खोसला के स्वर में ये भक्ति रचना। शब्द रचना अभिलाष की है और संगीत निर्देशन कुलदीप सिंह का है।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जावेद अली और बेला सुलाके की आवाजों में दुर्गा भजन। शब्द रचना सरल कवि की है और संगीत निर्देशन जावेद अली का है।

इसी भजन के साथ ही फिल्मी एवं गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

लबों पर मुस्कान सजा लीजिए, गमों को थोड़ा भुला दीजिए। ज़िंदगी आसान नहीं होती दोस्तों, मगर मुस्कुराकर हर सफ़र को खूबसूरत बना लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं चंचला यादव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की जो बिना किसी मेडिकल स्टोर के मिल जाती है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और जो खुद भी खुश रखती है और दूसरों को भी। जी हाँ दोस्तों, वो है मुस्कान, जो कि एक दवा है। साथियों ज़रा सोचिए, अगर सुबह उठते ही कोई आपको देखकर मुस्कुरा दे तो पूरा दिन थोड़ा हल्का हल्का नहीं लगता? और अगर कोई मुंह फुलाकर मिले या मुंह बनाकर मिले तो मूड भी ऑफ हो जाता है। यानी मुस्कान सिर्फ चेहरे की सजावट नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत भाषा है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पढ़ाई की, किसी को परिवार की, तो किसी को अपने भविष्य की। ऐसे में अगर हम किसी को एक सच्ची मुस्कान दे दें तो हो सकता है उसके दिन की सबसे अच्छी बात वही बन जाए

दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। एक बुजुर्ग रोज पार्क में अकेले बैठते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उनके पास गया, बिना कुछ कहे बस मुस्कुराया और नमस्ते बोलकर चला गया। अगले दिन फिर वही मुस्कान। कुछ ही दिनों में वो बुजुर्ग भी मुस्कुराने लगे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहने लगे, उन्होंने कहा, उस बच्चे ने मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में अभी भी अपनापन जिंदा है। देखा दोस्तों आपने, कभी कभी दवा को गोली नहीं, किसी की मुस्कान ही दिल का इलाज कर देती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मुस्कुराने से शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव कम करने और मन को हल्का करने में मदद करते हैं। यानी मुस्कुराइए और अपने मन को भी थोड़ा आराम दीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, नकली मुस्कान सिर्फ तस्वीरें अच्छी बनाती है, जबकि एक सच्ची मुस्कान रिश्ते खूबसूरत बनाती है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, किसी से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें। घर में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या फिर सड़क पर, हो सकता है आपकी एक मुस्कान किसी की उम्मीद बन जाए। कहते हैं महंगे से महंगा तोहफा भी कभी कभी उतनी खुशी नहीं देता जितनी किसी अपने की एक सच्ची मुस्कान दे जाती है। तो दोस्तों ज़िंदगी अगर इम्तिहान ले रही है तो मुस्कुरा कर जवाब दीजिए, क्योंकि मुस्कान हार की निशानी नहीं बल्कि हिम्मत की पहचान है। इसी मुस्कान के साथ आइए सुनते हैं फिल्म बर्फी से श्रेया घोषाल और प्रीतम निखिल पाल की आवाज़ों में प्यारा सा गीत। संगीत दिया है प्रीतम ने, गीत दिया है स्वानंद किरकिरे ने।

स्वागत है आप सभी का क्रम महफिल में। दोस्तों, आज के हमारे पहले गज़ल की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापुर से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, मनोज और मिथिलेश यादव ने। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं तलत अजीज़ की आवाज़ में खूबसूरत सी गज़ल। छू कर गुजरी वो हवा तेरी ही बात कह गई, दिल की वीरान गलियों में एक मीठी सौगात दे गई। कुछ एहसास लफ्जों में कहाँ बयां हो पाते हैं, बस एक मुस्कुराहट थी जो पूरी दास्तां कह गई।

दोस्तों अगली गज़ल सुनते हैं मेहंदी हसन की गाई। फासलों ने कम नहीं की दिल की चाहत कभी, ज़िक्र तेरा आज भी मेरी गज़लों में ज़िंदा है।

दोस्तों, इस गज़ल की फरमाइश हमें लिख भेजी थी प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय रूप साय श्री भगत हेमंत कुमार अंबिका राम खेलावन सिंह पैकरा रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से ने अगली गज़ल सुनते हैं दोस्तों सुमोना रवि विश्वास की आवाज़ में हुस्न जब अदाओं से मिलकर गज़ल बन जाता है हर एक लफ्ज़ दिल के आईने में उतर जाता है आज की महफिल भी उसी खूबसूरत एहसास के नाम जिसका जिक्र हो तो हर चेहरा मुस्कुरा जाता है।

दोस्तों, इस प्यारी सी गज़ल की फरमाइश हमें लिख भेजी थी चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे ने। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष जंघेल और अंदनी जंघेल ने। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, उसिका, आदित्य और अंजलि जंघेल ने। दोस्तों, अब आप हमें क्रम महफिल में गज़लों की और युवा पसंद में गीतों की फरमाइश हमारे सोशल मीडिया पेज पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। इसके लिए हर गुरुवार और रविवार की सुबह हमारे सोशल मीडिया पेज पर फरमाइश आमंत्रित करने वाली पोस्ट प्रकाशित की जाएगी। बस आपको उस पोस्ट पर अपनी फरमाइश कमेंट करनी है, तो देर किस बात की। जल्द से जल्द हमारे सोशल मीडिया पेज से जुड़िए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है air_abkp और फेसबुक पेज है आकाशवाणी अंबिकापुर। साथ ही आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है mahfilair@gmail.com और युवा पसंद की ईमेल आईडी है yuvapasand@gmail.com। इसी के साथ आज का क्रम महफिल बस यहीं तक। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आज की युवानी से अपनी दोस्त चंचला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: युवा श्रोताओं के लिए युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं कुछ पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे।

0: श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विचार बिंदु। शीर्षक है अहंकार, संकलन और वाचन स्वर मृदुल गुप्त का है।
4: लोगों में एक आम धारणा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे तक नहीं जाता। यानी अगर कोई जरूरतमंद है तो मदद उसे ही मांगनी पड़ेगी, मदद देने वाला व्यक्ति उसे मदद देने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मदद करने वाला व्यक्ति खुद भी प्रस्ताव देता है कि मैं सहायता कर देता हूँ, लेकिन ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है उसे ही सामने वाले से सहायता मांगनी चाहिए। कई बार समाज में ये भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत होती है वो मदद नहीं मांगता, बल्कि वो उम्मीद करता है कि कोई व्यक्ति खुद आकर उसकी सहायता करे। कुछ अंतर्मुखी और संकोची लोगों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह की सोच की वजह खुद को श्रेष्ठ समझना या घमंड होती है। उसे लगता है कि सहायता मांगने से उसकी तौहीन हो जाएगी। वो समझता है कि ये सामने वाले का कर्तव्य है कि वो खुद आकर ये प्रस्ताव पेश करे कि आपको ज़रूरत है और मैं सहायता करता हूँ। जब ऐसा नहीं हो पाता तो अपने को श्रेष्ठ समझने वाला इंसान नुकसान उठाता है। उसे भले ही नुकसान उठाना पड़ जाए, परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन वो फिर भी सहायता मांगने नहीं जाता। मांगने को वो अपना स्वभाव नहीं मानता। इसमें उसको अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिखती है। क्या इस तरह

0: अभिमान से ग्रस्त लोग ऐसा करके अपना भला करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घमंड और अकड़ सिर्फ मृत शरीर में ही हो सकती है, जिंदा इंसान में कभी घमंड नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि श्रेष्ठता के भाव के कारण लोगों में दंभ का अंकुर अब धीरे धीरे विशाल पेड़ बन रहा है। ये समाज की एक जटिल समस्या बन रही है और ज्यादातर लोग इसके असर में आ रहे हैं। इसके कई स्तर पर नुकसान होते हैं, मगर लोग इस भाव से अलग नहीं होना चाहते। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान समय में समाज में कई लोग अहंकार के रथ पर सवार हैं, कोई इस रथ से उतरना ही नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले से ज्यादा अमीर और प्रतिभाशाली है, साथ ही उसकी उपलब्धि सामने वाले से कहीं अधिक है। ये संभव हो सकता है, मगर अभिमान के कारण स्वाभाविक रूप से समाज में ईर्ष्या का प्रादुर्भाव शुरू होता है। लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर जलने लगते हैं, दूसरे को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। शायद यही वजह है कि समाज में आए दिन तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि जब दंभ से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, तो फिर ये इतना पुष्पित पल्लवित क्यों हो रहा है? आखिर समाज में अभिमान इतना पांव क्यों पसार रहा है? वसुधैव कुटुंबकम वाले भारतवर्ष में लोगों के मन में इतनी संकीर्णता कहां से आ रही है? तरक्की अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी लेकर आती है, तो क्या ये उसका परिणाम है? ये एक मनोविज्ञान है कि लोगों में अक्सर घमंड श्रेष्ठता के भाव से शुरू होता है। यही श्रेष्ठता की ग्रंथि लोगों को एक दूसरे से दूर करने लगती है। फिर धीरे धीरे लोगों के मन में ईर्ष्या पनपने लगती है। लोग दूसरों को दुख तकलीफ समस्या में देखकर खुश होने लगते हैं। पता नहीं समाज में ऐसा कौन सा जहर अपनी जगह बना रहा है, जिसके कारण लोगों को दूसरे को तकलीफ में देखकर आनंद की अनुभूति होती है। ये कुंठा नहीं तो और क्या है? अक्सर लोग सफाई पेश करने के तौर पर अभिमान को स्वाभिमान से जोड़ देते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। ये एक तरह का घालमेल है, जिसमें स्वाभिमान के नाम पर दंभ से लैस अभिमान को छिपाने की एक विफल कोशिश की जाती है।
1: अहंकार विषय पर आप सुन रहे थे विचार बिंदु, संकलन और वाचन मृदुल गुप्त का था। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ पलों में प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश मा सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद मा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही, उच्च शिक्षा मंत्री हा दिन निर्देश। औ राजधानी रायपुर मा 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही, मुख्यमंत्री हो ही शामिल। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा कहिन है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश मा रोजगार सुनिश्चित करे, ग्रामीण आजीविका ला मजबूत करे और गांव के विकास मा तेजी लाए के दिशा मा एक जरूरी कदम हरे। श्री चौहान हा आज तिरुपति जिला के मुक्कावरीपल्ले गांव मा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करिन। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री चौहान हा कहिन कि ए योजना के उद्देश्य ए सुनिश्चित करना है कि कोनो भी गरीब मजदूर बेरोजगार ना रहे और सबोला रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत ले आज विकसित भारत जी राम जी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा एक कार्यक्रम मा वर्चुअल शामिल होइन। कार्यक्रम मा उप मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप मा शामिल होइन। ए बेरा मा श्री शर्मा हा कहिन कि ए केवल रोजगार उपलब्ध कराए के योजना नहीं है, बल्कि विकसित गांव ले विकसित भारत के निर्माण के अभियान है। उमना कहिन कि केंद्र सरकार हा छत्तीसगढ़ बर 3,300 करोड़ रुपयों के प्रावधान करे है। श्री शर्मा हा बतायन कि योजना के तहत 318 प्रकार के काम शामिल करे गए है। एमा जन संरक्षण ले जुड़े 107, ग्रामीण अधोसंरचना के 90, आजीविका संवर्धन के 86 और आपदा प्रबंधन ले संबंधित 35 काम शामिल है। उमना कहिन कि अब जॉब कार्ड के जगह मा जीआरजी कार्ड जारी करे।

0: जाही। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ह गंडई खुर्द के प्रदेश के पहली विकास काम के रूप में शेड निर्माण प्रस्ताव ला स्वीकृति दीन। प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के अध्यक्षता में मंत्रालय में होई समीक्षा बैठक में ये निर्देश देगीस। संगे संग ओमन नहा 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेज में प्राचार्य के पदोन्नति के प्रक्रिया पूरा करे बर कही। बैठक में बताएगीस कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी मन बर महाविद्यालय में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम घलो शुरू करे जाही। उहे सरकार हा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला स्नातकोत्तर स्तर में लागू करे के तैयारी शुरू कर दे है। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होही। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक डहाल आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भर ले किसान सहकारी संस्था के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होही। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होवैया ए 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत बनाए ऊपर चर्चा करे जाही। कार्यक्रम के उद्देश्य सहकारिता आंदोलन ला बढ़ावा देना और सहकार ले समृद्धि के संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्हें काली 3 जुलाई के बिहनिया 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करे जाही। सहकारिता के भावना के साथ एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर थीम में आधारित दौड़ में युवा विद्यार्थी किसान सहकारी संस्था के सदस्य और आने वर्ग के लोगन शामिल होही। दौड़ में पुरुष और माई लोगिन वर्ग के प्रतिभागी मन भर पहली दुसरैया और तीसरैया जगह के विजेता मल्ला आकर्षक पुरस्कार दे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडीह नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद मन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होइन। ए बेरा में चांपा एसडीएम पवन कोसमाहा अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षद मन ला पद और गोपनीयता के शपथ दिलाइन। समारोह में मुख्यमंत्री हा बम्हनीडीह दहिदा तक हसदेव नदी में पुल बनाए बम्हनीडीह में विद्युत मंडल के सब डिवीजन ऑफिस खोले और मंगल भवन निर्माण के घोषणा करीन। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल हा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के लयिका मन बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तिथि 3 जुलाई ले बढ़ा के 12 जुलाई कर दे है। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल में अपन आवेदन कर सकत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़बो बांचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ले मुलाकात करीन। ए दौरान दोनों मंत्री मन के बीच महिला और बाल विकास ले जुड़े आने आने विषय में चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े हा केंद्रीय मंत्री ला बस्तर के दूर और जनजाति अंचल में संचालित योजना के प्रगति चुनौती और संभावना के जानकारी देन। राज्य सरकार हा आज बस्तर दुर्ग और बिलासपुर संभाग ले संबंधित नगरी निकाय बर 402 एल्डरमैन के नियुक्ति करे है। बिलासपुर नगर निगम मा 197, दुर्ग नगर निगम मा 142 और जगदलपुर नगर निगम मा 63 एल्डरमैन मन के नियुक्ति करे गए है। एकर पहली रायपुर संभाग के कतको नगरी निकाय बर घलो एल्डरमैन के नियुक्ति करे गई रहीस। राज्य सरकार हा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी मन बर अल्पावधि ऋण के सुविधा शुरू करे है। ये सुविधा राज्य शासन के ई क्रॉस कोष प्रणाली ले एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिया ले संचालित करे जाही। नवा व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपन पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण बर आवेदन कर सकी। आवेदन के बाद EKYC डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति के प्रक्रिया पूरा होए मा ऋण स्वीकृति और वितरण के प्रक्रिया जल्दी पूरा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिन कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी मन के कल्याण और उकर आर्थिक सुरक्षा बर प्रतिबद्ध है। उहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा कहिन कि अल्पावधि ऋण सुविधा कर्मचारी मन ला जरूरत के समय तुरते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराही और ओमन ला सम्मानजनक और सुविधाजनक वित्तीय विकल्प प्रदान करही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा प्रदेश के किसान मन ले मौसम के परिस्थिति

खेती मनला ध्यान में रखत हुए खेती बाड़ी के समुचित योजना बनाए के अपील करे हे। उमन कहीन कि सरकार किसान मन के संग खड़े हे। मौसम विभाग हा पहले ही बताए रहीन कि अल नीनो के कारण ए बछर मानसून कमजोर रही। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IMM मा अवैया 4 और 5 जुलाई के चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। दो दिवसीय ए शिविर मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होही। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ला और प्रभावी

0: दिवसीय ए शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होही। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ला और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक की उपलब्धि, चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहे है कि लगातार तीसरैया बछर आयोजित होवत ए चिंतन शिविर सुशासन ला ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाए के दिशा में जरूरी पहल है। युवा, माइलोगिन, किसान और नवा उद्यमी मन ला स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करे बर प्रोत्साहित करैया जिला व्यापार और उद्योग केंद्र डहर ले काली 3 जुलाई के सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम में तेजस कार्यशाला के आयोजन करे जाही। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागी मन ला स्टार्टअप पंजीकरण, आने आने शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करे और ओला आगू बढ़ाए के बारे में जानकारी दी। संगे संग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करे के संभावना ऊपर घलो चर्चा करे जाही। दुर्ग पुलिस हा लगभग 1149 खाता के पहचान करके 39 लोगन मन ऊपर FIR दर्ज करे है। ए मामला मा अब तक 165 लोगन मन ऊपर कार्यवाही करे जा चुके है। जांच में एक खुलासा होए है कि आम लोगन के बैंक खाता ला म्यूल अकाउंट यानी किराया खाता बना के करोड़ों रुपया के साइबर ठगी करे गए है। शुरुआती जांच में ए आगू आए है कि बैंक खाता के प्रयोग साइबर अपराध ले अवैया पैसा ला छिपाए और आने आने खाता में ट्रांसफर करे बर करे जात रहीस। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हा आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के शुभारंभ करीन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला ले घलो आज ए योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ होइस। प्रदेश मा सहायक प्राध्यापक के 700 खाली पद मा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री हा दीन निर्देश। और राजधानी रायपुर मा 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन के आयोजन करे जाही, मुख्यमंत्री हो ही शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर
2: मीडियम में 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उजर साय कुजूर और साथियों के गाए सादरी लोकगीत और प्यारे लाल विश्वकर्मा और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए पहले सुनते हैं कार्यक्रम में उजड़ साहे कुजूर और साथियों का गाया डोमकच गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में आइए अब सुनते हैं प्यारे लाल विश्वकर्मा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

प्यारेलाल विश्वकर्मा और साथियों के स्वर में अभी आपने ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुना। इसी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली समाप्त होता है। श्रोता, हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी सुनिएगा शाम 6:30 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल शाम 7:20 पर। इंस्टा फरमाइश सुनिएगा रात 8:00 और ईमेल की गूंज पेश करेंगे आज रात 9:30 पर। आज रात 10:00 प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत सुनिएगा रात 9:15 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम का आगाज फिल्म सर के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है कुमार सानू की, शब्द रचना कतिल शिफाई की और संगीत निर्देशन अनु मलिक का है।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में फिल्म जुदाई का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति से किया औपचारिक शुभारंभ। कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की। और रायपुर में कल से 2 दिवसीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह राजधानी के मरीन ड्राइव में होगी सहकार संकल्प दौड़। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
5: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
4: योजना के शुभारंभ अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि ये केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का अभियान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेजों में प्राचार्यों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में अंग्रेजी संप्रेषण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातकोत्तर स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आज बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग से संबंधित नगरीय निकायों के लिए 407 एल्डरमैन की नियुक्ति की है। बिलासपुर नगर निगम में 197, दुर्ग नगर निगम में 147 और जगदलपुर नगर निगम में 63 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। इससे पहले रायपुर संभाग के कई नगरीय निकायों के लिए भी एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों से मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी की समुचित योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
6: किसानों के साथ सरकार है और मौसम विभाग पहले से ही अवगत कराया है कि साल अल नीनो के कारण मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा, और हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत करा रहे हैं। उस हिसाब से किसान मतलब अपना खेती बाड़ी का पूरा योजना बनाए।
4: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर चांपा एसडीएम पवन कोसमा ने अध्यक्ष रमेश डटसेना और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ

0: दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ने बम्हनीडीह दहिदा तक हसदेव नदी में पुल बनाने, बम्हनीडीह में विद्युत मंडल का सब डिवीजन ऑफिस खोलने और मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा राज्य शासन की ई कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण तथा सहमति की प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आगामी 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लगातार 3रे वर्ष आयोजित हो रहा यह चिंतन शिविर सुशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
1: 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है। ये 3रा साल होगा, इससे काफी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफी जानकारी, इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजधानी रायपुर में 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकार समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। वहीं कल 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच महिला और बाल विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री को बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों में संचालित योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों तथा संभावनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी है। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र और श्रमेव जयते ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के कंसबहाल और धारवाडीह सेक्शन के बीच मरम्मत कार्य के कारण 3 जुलाई से 17 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। ये मेगा ब्लॉक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अप और डाउन लाइन पर लिया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस और बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी तथा राउरकेला दुर्ग के बीच रद्द रहेगी। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार तथा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा कल 3 जुलाई को सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने लगभग 1149 खातों की पहचान कर 39 लोगों पर FIR दर्ज की है। इस मामले में अब तक 165 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट यानी किराए का खाता बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से अर्जित धनराशि को छिपाने और विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच

राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्री नारायण मीणा ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सुंदर राजपी का स्थान लिया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने वर्ष 2026-27 के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक दलों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी को जीपीएफ में जमा राशि निकालने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीबीजी रामजी योजना का केंद्रीय ग्रामीण

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं और ये वक्त है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण का। पहले हम आपको बता रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

थोड़ी देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा के अलावा सुनिएगा किसानवाड़ी के तहत क्रम आजकल मंडी भाव मौसम की जानकारी, और साथ ही सुनिएगा मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात 8 बजे सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात 9:15 पर चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे, और श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात 9:30। आज रात 10 बजे प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे लाइट वोकल अमल एंटनी का और फोल्क चकियर कुटू मार्गी मधु का। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम, और अब आपको बता दें कल के कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु पेश करेंगे कल सुबह 6:30 पर। रामचरित मानस का गायन सुनिएगा कल सुबह 6:35 पर। सुबह 7 सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल, इसमें कल आप सुनेंगे सुषमा तिर्की और साथियों का गाया हकवा गीत, डेली बाई और साथियों के स्वर में डोमकच गीत और रामलल्लू पांडे और साथियों के स्वर में निर्गुण भजन। सुगम संगीत सुबह 7:15 पर और जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा सुनिएगा कल सुबह 7:30। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनिएगा कल सुबह 9 और नए तराने पेश करेंगे कल सुबह 10। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 11:05 पर। एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग पेश करेंगे कल दिन में 12:00। 12:30 पर होगा एक ही शीर्षक से लिए गए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। ग्रामीण महिलाओं के लिए गर्गोसाइन कार्यक्रम प्रसारित करेंगे कल दोपहर 1:10 पर। इसमें सामयिक चर्चा के अलावा सुनिएगा क्रम हमर धरोहर लोकगीत और यातायात नियम सावधानियां, इस विषय पर चर्चा। ईमेल की गूंज पेश करेंगे कल दोपहर 1:40 पर और कल रात 9:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंदा पेश करेंगे कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, युवा श्रोताओं की युवावाणी कल शाम 5:30 पर। इसमें कल आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी कल शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा सुनिएगा कल शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा रोजाना की तरह शाम 7:20 पर। कल रात 8:00 सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत कल रात 9:15 पर।

और शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग प्रधान पेश करेंगे कल रात 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन पेश करेंगे कल रात 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। कार्यक्रम की पहली गजल हरिओम शरण की आवाज में। बोल हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं।

गुलाम अली की गाई ये गजल अभी आपने सुनी। शब्द रचना बसर नवाज की थी और संगीत निर्देशन गुलाम अली का था। और अब अंत में आइए सुनते हैं मेहदी हसन की गाई ये गजल। शब्द तस्लीम फाजली के हैं और संगीत नौशाद का है।

0: अग्नि भैया राम राम
1: राम राम धर्मो भैया।
0: हमारा जम्मू चौपाल सुनैया किसान भाई उनकर घर कर लोग सबका बहुत बहुत स्वागत करत थी।
1: हाँ स्वागत करत थी। और देखा धर्मो भैया मानसून हर तो आएगी।
0: अच्छा रद बदाएगी गिरी
1: रद बदाए के देखा जिसे अषाढ़ घोषित नहीं वही दिन लेते पानी देता है।
0: हाँ
1: नहीं तो यही तो भाई बरसात कर दिन अषाढ़ और सावन में बारिश।
0: हाँ बाकी का है कि अषाढ़ कर जो है ना पहले कटिक जो बरखा आतीस ना ओकर में सोच और फिक्राए रही काजी ने कैसे करी भाई।
1: बाकी देखा सब कति अभी भी नहीं भराई सा है लेकिन सब कति सुने में आता है कि होते चाहे रोज तनी मनी बरसत बरसत है।
0: हाँ।
1: तो ये पानी हर फायदा तो कर ही।
0: हाँ।
1: किसान भाई मन भी देखा बिहन गोतन मल्ला खरीद कर आके रहीन और मन दे अब धान कर थरहा मल्ला जोड़ी कर बुनाई मल्ला तेज कर दी।
0: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह। देखिए हमारे ठन एक योजना हवे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एकर देखिए उद्देश्य ये हो कि हर खेत तक पानी पहुँचे।
1: हम देखा तो गोइट कर रहा था बरखा कर।
0: हाँ
1: कि कैसे बरखा बढ़िया होए कि ये खेती पाती है होए।
0: हाँ का है कि देश के हर खेत में सुनिश्चित जो है ना सिंचाई सुविधा प्रदान करना एक उद्देश्य हवे। और खास कर देखिए ना कि पानी कर जब हम बचत करना चाहती तो जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जला हम जैसे ड्रिप विधि नहीं कथी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर ओला ज़्यादा बढ़ावा देना है और काफ़ी एकर में छूट भी देता है 45-70% तक। पानी कर बचत तो होबे कर ही और देखिए कि पैसा ढेबुआ कर भी बचत होले में।
1: सबसे बड़ा बात का है नहीं देखा हमन पहले बाढ़ पद्धति से सिंचाई करत रहन।
0: हाँ।
1: कहीं ले बुनी तो पंप ले चालू कर दी रात भर पानी बहत रहे कोनो जग भरे कोनो जग ज़्यादा भर जाए कोनो जग पहुँच भी नहीं करे।
0: हाँ
1: तो कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कर ये योजना है। और किसान भाई मेला ड्रिप पद्धति से सिखाता है कि भाई जितना ड्रिप लगवाही तो कम पानी है टपक सिंचाई विधि से एक एक बूंद पानी गिरी वह नमी बनाए के रखी और सिंचाई कर जो बाढ़

0: पद्धति है ओकर से राहत मिली।
1: हाँ देख बाढ़ पद्धति जो कहे ना पानी ला भनिया हमन जो दहाती है तो ओकर में कहा है कि जहाँ तक हमन ला पानी पहुँचाना है वहाँ तो पहुँचता है, बाकी ओकर अलावा भी बाकी खरपतवार मन ओला ले लेते ना।
2: एक साथ में नहर होगी, तलवा होगी, कुआं होगी, लिफ्ट सिंचाई कर परियोजना मन होगी से एकर भी योजना में विकास होता है।
1: हाँ।
2: और पुराना जो पारंपरिक कुआं रहिन जेमे बढ़िया पानी भरे रहे, वर्ष भर पानी भरे रहे, वो कुआं मल्ला भी मरम्मत कराए के दुरुस्त कराए के सिंचाई योग्य बनाल जाता है, ओकर जल संरक्षण करल जाता है।
1: बहुत बढ़िया बात है भाई, कहे कि पुराना तो देखब ना कि ढोड़ी मन तो आजकल देखे में नहीं दिखता है, पहले जो भरे रहे कि लगे कि कभो जिंदगी में नहीं हर खत्म।
2: हाँ भाई ढोड़ी तो कहे कि ढोड़ी और बहुत रहे बारह महीना।
1: हाँ
2: नहीं और वहीं का पानी लोग उपयोग ही करते रहे, बाकी अब धीरे धीरे जो जल स्रोत है वह नीचे चल जाता है। एक संगे वाटर सेट कर विकास भी है, वर्षा जल संरक्षण कर बात है।
1: हाँ।
2: मिट्टी कर और जल का संरक्षण कार्य एक संगे करे कर बात है, भूजल कर पुनर्भरण करे कर भी बढ़ावा दिया जाता है कि दोबारा जल संरक्षण हो जाए और दोबारा जो है भू जल हर भरना शुरू हो जाए।
1: हाँ बहुत बढ़िया बात है भाई, क्या है कि अभी तो देखिए कि अब बरखा के समय हमन ला पानी कर जो है ना उपयोग सोच समझ के हमन ला करना चाहिए, अनभनिया पानी है बहुत ज़्यादा बह जाए ओकर कारण ही देखब ना। अभी तो भाई कुछ रोज पहले ना देखब कि गर्म में अगबकाए के मर कहाँ कहाँ ले डो डो के पानी ला पिए कर पानी ला लान तो ओकस स्थिति न आए, एकर लिए हमन हमेशा गोट बात करती और काफ़ी जागरूकता भी ऐसे वैसे, लेकिन कुछ जगह में का है ना कि अभी भी ये बात हवे कि फलना जैसे सरकारी नलमन चलत रहते हैं कुछ जगह देखिए ना कि बहुत है तो वो बंद भी नहीं करता है, तो ये दुरुपयोग है।
2: हाँ, एकर संगे ना योजना में धरो भैया किसान मला सीधे लाभ यह है कि सिंचाई कर जो लागत है उसमें कमी आई।
1: हाँ
2: एकर अलावे पानी कर बचत 30-50% तक होता है।
1: बिल्कुल
2: अगर टपक सिंचाई ला लगवाही तो निश्चित रूप से हो ही बचत, नहीं स्प्रिंकलर ला लगवाही तो निश्चित रूप से कमी आई, और सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है वहाँ भी राहत मिल सकता है एकर से, पानी कम खपत हो। एकर संगे उर्वरक और बिजली कर खपत में भी कमी आई।
1: बिल्कुल
2: बागवानी चाहे नकदी फसल में ज्यादा लाभ मिली जब टपक सिंचाई होगी चाहे स्प्रिंकलर होगी, एकर से जब खेती करना शुरू करें किसान मन तो ओकर सीधा लाभ किसान मला ज्यादा उत्पादन पर हो।
1: बिल्कुल हमन भाई देखा थी ना जमन जमन लगाई ना किसान भाई ना तो देखब कि 12 महीना कमाता है और नवा नवा फसल ला भी उगाता है। नवा फसल अगर बात हुई तो अग्नि भैया मैं कहूँ कि माटी कर परीक्षण जो किसान भाई नहीं कराए नहीं ना जरूर से जरूर कराए लें ताकि वो पता चल जाए हमारे माटी में का पोषक तत्व तो कमी है बेसी है का है पीएच मान कितना है वो हिसाब कर खेती करी तो लाभ ही लाभ होगा।
2: योजना का लाभ लाभ ही लेना है, जब ये 1 जुलाई 2015 की केंद्र सरकार हर योजना शुरू करी तो हर किसान के खेत में पानी पहुँचाए कर जो योजना हुई।
1: हाँ।
2: एकर तहत नहर मतलब सुधारी नहर मन का निर्माण होता है, बड़े बड़े जो बांध रहे सुमन का मरम्मत होता है, तो सीधे कहीं ना कहीं से पानी कर संरक्षण और किसान कर खेत में पानी पहुँचाए कर जो लक्ष्य है वह हित कर संवर्धन होता है।
1: हाँ बिल्कुल भाई ध्यान रखी कि सरकारी योजना तो रहे राउर मन भर, बाकी राउर मन ला भी आँख कान खोल के रहना है, जागरूक बनी और फायदा ली किसान भाई मन कराए दुगुना करना है तिगुना करना है, सरकार प्रयास करता है कि किसान कराए दुगुना होए, बाकी हमन ला भी आँख कान खोल के रखना पड़ी और जो योजना हवे ओकर लाभ लेना चाहिए।
2: और एगो योजना है देखा अल्पसंख्यक मन भर जो कल्याण भर प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम चलता है ओकर तहत एगो नई रोशनी योजना है, ओकर से भी जो अल्पसंख्यक समुदाय कर जो बच्चा मना है अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग मना है वाला सीधा लाभ मिलता है।
1: हाँ महिला मन बर देखी कि खास कर योजना हवे 18 से 65 साल कर बीच कर जो अल्पसंख्यक महिला है ना ये मन ला बनाना है, सशक्त आत्मविश्वासी बनाना है ताकि उमन भी जो है ना सरकारी कोई भी प्रणाली है चाहे बैंक है या कोई दूसरा संस्थान है तो आगू आए और उमन से बातचीत कर सकें उमन से लाभ ले सकें, कहे कि भाई पछुआए रहें देखिए कोई चीज का जानकारी नहीं लेब तो कहे कि पाछू रहना पड़ी कि भाई अगुवाए में भी ना लगी कि अरे का गुठिया हूँ कैसे गुठिया हूँ, तो सरकारी योजना हवे नई रोशनी बहुत देखी बढ़िया योजना है
2: और एक अंतर्गत बहुत सारा देखा प्रशिक्षण मतलब दिल जाता है।
1: हाँ।
2: जो अल्पसंख्यक समुदाय के महिला मना है मतलब कंप्यूटर शिक्षा से लेके सिलाई कढ़ाई ओमन का जो परंपरागत काम रहे लोला।

0: लिखाए पढ़ाए के उमल एगो नवा रास्ता मिलाना था
1: हाँ।
0: ताकि वो सक्षम बन सकें, ओमन का सशक्तिकरण हो सके, ओमन मजबूती के साथ समाज के साथ खड़ा हो सके, जो आर्थिक दुर्बलता है, आर्थिक परेशानी है, वो हर दूर हो सके
1: हाँ।
0: तो ये नई रोशनी ओकर बड़े का नाव दिहला है और बढ़िया में काम होता है और महिला में सशक्त भी होता है और आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़त भी है।
1: बिल्कुल अग्नि भैया, कहीं चीज में जब देखी कि जो कोनो चीज का जानकारी रही, कोनो चीज जैसे राउर बना थी या कोनो आप राउर में हुनर है तो वो हुनर कैसे बढ़ी, आगे आना पड़ी और ओकर खातिर देखी हुनर पर भी सरकार जो है लोन भी देहल और प्रशिक्षण भी देता है, प्रशिक्षण कर संगे संगे पैसा डबुआ भी भेटवाता है, तो जरूर से जरूर कहे कि ध्यान दे राउर मन पर कार्यक्रम बनेल और महिला सशक्तिकरण कर बात है जहाँ तक ना कि अभी तो देखी महिला पुरुष सब बराबर हमें पढ़त लिखत तो इतना ज्यादा है कि हमन पुरुष मन डाक गए अच्छा नंबर लाते हैं और कहब ना दोनों चीज घर कर काम उतल करे के अलावा भी देखब कि पढ़ाई लिखाई में इतना आगू हमें तो पढ़ाई लिखाई कर में आगू आना है। संगे संगे जो है ना अभी आधुनिक युग जो है एकदम कहब कि बहुत तेजी कर युग हवे, कंप्यूटर कर युग हवे, तो इमें जो है कंधा से कंधा मिला के रहना है और कोनो चीज में पीछे नहीं रहना है। नई रोशनी एक भाई नावे से लगे कि भाई इनकर बर कार्यक्रम है तो बिल्कुल फायदा उठाएं और देश ला रोशन करें।
0: हाँ तो देखा बढ़िया गोट हुई, अब तो हम उनका जुआर होता है किसान वाड़ी कती जाए कर
1: हाँ
0: तो चल जाए
1: हाँ।

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसान वाड़ी सुनिए हमर जम्मो किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। धर्म भैया का राम राम, अग्नु भैया राउर के भी राम राम।
3: हाँ धर्म भैया राउर भी राम राम कहता हूँ। और देखा अरे जब पानी बूंदी कर दिन शुरू होगी,
2: हाँ
3: मानसून और सक्रिय होगी, सब गुठियात भी रहें। अब ये धान कर उन्नत खेती और धान कर रोपा का तैयारी कैसे करें किसान भाई मन, उमे लग भीड़ गिना है। हाँ। सब जन वैज्ञानिक तरीका से नवा नवा बिहन लेके खेती पाती करते हैं।
2: हाँ देखिए बताए ना, बड़ा तेजी कर युग है ना भाई अभी, और समय खेती कर तो बात ही है अग्नि भैया कि समय ला पकड़ना है। समय कर जो खेती कर ही वो मन जो है फायदा पाते हैं। अगर समय में पछुआ जाए तो फिर वही फिर कीड़ा बीमारी सब ज्यादातर देखे में आये।
3: और धान कर जगह उन्नत नर्सरी कर गोट करती नहीं तो हम अक्सर हम किसान भाई उनकर भी गोट ला सुनात रहती। और देखिए धर्म भैया कि इतना महंगा बिहन किसान भाई मन खरीदते हैं।
2: हाँ।
3: अभी तो हाइब्रिड कर बिहन और अच्छा महंगा रहे।
2: हाँ।
3: 6 किलो कर बिहन हर देखा हजारों रुपया कर भेटायल। और ये बिहन ला अगर किसान भाई मन लेहीन, अगर बढ़िया नर्सरी तैयार नहीं कर पाही ना तो नुकसान हो जाए।
2: हाँ।
3: कई बार किसान भाई मन का करते हैं कि धान ला खरीद के लेते हैं और वो लाए जरिया करे बर अंकुरण करे बर पानी में फुलाते हैं। तो हम उनका कहना है और वैज्ञानिक मन भी के भी कहना है कि कम से कम वाला 24 घंटा फुलाए दें और निकाले के बाद वाला जूट कर बोरा के ऊपर हल्का सा पतला लेयर में फैला दें।
2: हाँ।
3: और ओकर ऊपर एक तो पतला जूट कर बोरा वाला भिजाए के ढाप दें।
2: हाँ।
3: लेकिन किसान भाई उन का करते हैं धर्म भैया कि लेज के वाला 12 घंटा फुला ही तह निकाल के वाला कुढ़ा नहीं ठेल देते हैं ओकर ऊपर बोरा ला दही। मैं तो कोनो कोनो जगह देखता हूँ पखना ढेला वाला भी चिपे रहते हैं तो घर का जनता वाला चिपे रही।
2: हाँ।

0: अरे वाला
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो एकस में का होल कि उधर गर्मी इतना ज्यादा हो जाए कि धान हर जर भुजा जाए उसमें से अंकुरण नहीं निकले और किसान भाई मन वही लेस के अगर नर्सरी कर तैयारी में लगाते हैं तो एक को जामबे नहीं करे तो कहते हैं इतना महंगा बिहन रही सब बिहन खराब है किस तो किसान भाई मन ये बात कर ध्यान दें कि नर्सरी तैयारी से पहले धान कर अंकुरण ला ध्यान दें।
1: बहुत बढ़िया बात कहें भाई, एतेक महंगा जो लाने रहती तो जानकारी रहना जरूरी है भाई। हमन तो देखिए हमेशा वैज्ञानिक मन आते रहते हैं और सलाह देते हैं कि कैसे कैसे करना है, बढ़िया सुगर खेती करें
0: और रोपा भी लगात घनी ना, जैसे अगर आज कोई किसान भैया बढ़िया बतर देख के धान का नर्सरी करी ना है तो ठीक 20वां दिन ओला उखाड़ना शुरू कर दें और रोपाई करना शुरू कर दें। अगर 20 दिन से चाहे 25 दिन से ज़्यादा हो जाते तो धान से में उत्पादन घटना शुरू हो जाए, ओकर कंसा निकलना बंद हो जाए और कई को किसान भाई में तो 30 दिन 40 दिन तक धान कर जो नर्सरी रहे निकाल के लगवा रहते हैं तो में जब रोपा होल तो में कंसा नहीं निकले और एक गो अगर रही तो में कितना बाली हुई। तो किसान भाई में समय कर भी ध्यान दें कि अगर 15-20 दिन के भीतर धान का नर्सरी लगाई नहीं वाला उखाड़ के और रोपाई करा दही तब ये उत्पादन भी बढ़िया हुई और वैज्ञानिक विधि भी यही आ रहा है, वैज्ञानिक तकनीक भी यही आ रहा है। और कोशिश का करें धर्मुबिया कि पूरा लाइन से रोपाई करवाएं ताकि उनमें हवा पानी बढ़िया जा सके, खरपतवार का नियंत्रण बढ़िया हो सके और बढ़िया बाली भी फूटे और उत्पादन भी ज़्यादा हो।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात कहें का है कि वैज्ञानिक अनुशंसा जब करते हैं और मन बीजा लाने ही तो एक चीज कर जैसे ध्यान रखें कि जैसे बीज कर सबसे पहले तो कहे बढ़िया किस्म का बीज का चुनाव करें है ना। ओकर अलावा देखा भाई जैसे उन्नत बीज है ओकर हमन कोई भी होगी जैसे हाइब्रिड बासमती या कोई भी ले थी बीजा तो उन्नत बीज का चुनाव कर बीजोपचार वाला कर बीजोपचार पर हमारे जो है अनुशंसा करते हैं कि कार्बन डाइजिम या ट्राइकोडर्मा एकर से उपचारित करें। और का है कि ऐसा जगह जैसे थरहा अगर करता है ना तो ऐसा जगह करें चुने जहां पर पानी के जो है जल निकास कर व्यवस्था हो और धूप भी पर्याप्त मात्रा में उजग पड़े और जो जो खेतों में लगाना है जो खेत में तो 10% कथें कि हिस्सा में थरहा मल्ला करना चाहिए।
0: और थरहा कर समय आजकल तो नवा नवा तकनीक ऐसे धर्म भी है देखिए नहीं तो नया नया तकनीक यह है कि जमीन में नहीं करता है जेकर समन जो पौधा रहते हैं भट्टा कर मिर्चा कर पौधा तैयार करते हैं तेन हेयर पोकोपीड के माध्यम से और छोटे छोटे टुकड़ा में धान कर जो नर्सरी लगाता है और एक ओला निकाल लेते हैं सुपानी है लेज के वाला सीज लगा देते
1: लगते हैं पानी तो, कर जिनके पास कमी है उनकर पर तो ये एकदम बढ़िया
0: और घरे भी कर सकते हैं घर आंगन में कर सकते हैं घर के पर्ची के आसपास कर सकते हैं अपन बाड़ी में कर सकते हैं और कम पानी में धान कर थरहा तैयार हो जाएगी।
1: हाँ बिल्कुल कहब ना कि जैसे राहुल भाभी बताते रहे ना कि 15-20 दिन में रोपाई जो है योग्य हो जाए सामान्य जो किस्म जैसे लगाती है उसमें तो 20-25 दिन लगेल या जैसे बासमती लगाते हैं तो 25-30 दिन लगेल। हाइब्रिड कर जो बात बढ़िया कहें कि 15-20 दिन में रोपाई बार जो है एकदम तैयार हो जाए।
0: और देखा एक संगे संगे गौ गोट कर हम रोपाई कर तो तैयारी करते हैं किसान भाई बन संगे संगे हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कर बारे में भी जानना जरूरी है। और स्वस्थ रही माटी हर तो उत्पादन भी बढ़िया होगी।
1: बिल्कुल
0: एक गोट ला किसान भाई बन जान ले एक बार भारत में देखिया नहीं तो पूरा हर राज्य में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाता है किसान भाई मन कर खेत का माटी लेता है ओकर जाँच करता है और जुलाई 2025 तक माने पौर साल तक एकर जो आंकड़ा रहीस तो पूरा देश भर में किसान मन का 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन चुकी है।
1: देखिए बहुत बढ़िया बात है। देश कर बात कर थी ना कितना बढ़िया लागत है बाकी मैं देखा तो हमर क्षेत्र में अभी भी कुछ जो है ना पछुआइन है किसान भाई मन काज नहीं काला जो होते हैं सब चीज कर सुविधा है हमारे यहाँ जबकि वैज्ञानिक आते हैं अनुशंसा करते हैं और जो मन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइन है या माटी कर जांच कराइन है वो मन ओकर अनुसार खेती करते हैं और जीवन में घाटा कभो नहीं पाए ये बात
0: कई को फायदा है। माटी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिंक सल्फर सहित कई गो ऐसा पोषक तत्व है ओकर कमी कर पता चलेगा हमन कई बार नाइट्रोजन हमर खेत में है, माटी में है, और नाइट्रोजन ल डालत
1: हाँ।

0: अनुभन्या पोटास कर मात्रा अधिक है तो पोटास ला डालत रहती तो एकर कमी कर पता चली तो कर भरपूर ओकर खुराक पूरा हुई।
1: अग्नि भैया जो चीज कर कमी है हमला वो चीज ला देना है ना, पहले से जो है पर्याप्त ओला काहे पर देना है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व जो कर बात होल जोर जैसे जिंक लोहा तांबा मैंगनीज वगैरह तो एला तो जो जांच नहीं कराई वो जानबे नहीं करें।
0: और यूरिया फास्फोरस और पोटास ले आगू बढ़वे नहीं
1: बढ़वे नहीं,
0: नहीं। जबकि जिंक सल्फर मन के भी कमी में रहे और हम देखते कि धान में जो खैरा रोग हो जाए झुलसा रोग हो जाए जो झूले जाए पूरा पीला हो जाए वो जिंक कर कमी के कारण हो। तो किसान भाई मन जाँच करवाए लें माटी का और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के संगे संगे जिंक का भी प्रयोग करें
1: करें।
0: एकर से फायदा हुआ है कि किसान मल्ला आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में जो उर्वरक है रासायनिक होकर उपयोग कर पता चल जाए। और उर्वरक में जो हम अनावश्यक खर्च करती कि भाई हमारे खेत में 5 बोरा यूरिया लागे तेहू साल लागे तो ऐसा नहीं है। अगर हम उनके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है पहले से तो हम उनका खर्चा हर भी बाँची
1: बाँची। और हमला जब पता चल जाए ना कि हमर माटी कौन किस्म कर हुए एक तो पीएच मान कर बात हल पीएच मान अगर पूछ दिया तो मुँह फायर दही कि पीएच मान का हुए। अरे भाई माटी कर जांच कराई माटी कर जो है पीएच मान तुम्हार अम्लीय है माटी है कि क्षारीय माटी है कर पता चली। और कहा है कि लिखरी में जांच होता है जब इतना सुविधा सरकार देता है राहुल मल्ला तो कुछ करना नहीं है खाली अपन माटी मल्ला लेज के वहाँ देना है जांच हो जाए पता चल जाए कौन सा पोषक तत्व तो बेसी है कौन सा कमी है वो हिसाब कर खेती करी बढ़िया खेती करी नवा नवा चीज लगा अपनाई और लाभ ले आय ला दुगुना तिगुना करी।
0: तो मैं कहा धीरे गोठ संदेश मल्ला सुन ली का
1: एक ठन गीत सुन लेती है संदेश वाला सुनबो
0: लगे तो

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई देखिए बढ़िया से गोरखन गीत ला सुनेन, संगे संग संदेश ला भी सुनेन। बकी का है बेरा हुए चली से किसान भाई से मुलाकात कर कर भाई हमें हाँ किसान भाई बहादुर सिंह खरीफ कर कैसे कैसे तैयारी कराता है गोड बात हुई से बिरजू भैया ठन सुनल जाए
4: लगे तो सुनल जाए।
5: किसान भाई आज मोर साथ हैं गुड प्रगतिशील किसान, तो उनका से गुड बात करके जाना था कि कैसे खेती करते हैं कैसे आगू बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन नाम बताइए।
6: बहादुर सिंह।
5: कौन गांव?
6: रकेली, ग्राम रकेली।
5: तो बहादुर जी अभी गर्मी में कौन कौन सा फसल ले?
6: मक्का रहीस, लौकी रहीस, और बाद में कुछ भिंडी उन्दी रहीस, कोहड़ा उहड़ा, बस कुछ मिर्चा उर्चा खाए पिए बड़ी ज्यादा तो मन नहीं रही, बेचे वाला मक्का रहीस, लौकी रहीस, बस यही मैं बेचे वाला रही, कुछ तरबूज रहीस।
5: का सिंचाई सुविधा है?
6: बोर से।
5: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गर्मी के भी धान भी लगाए रहे हैं?
6: हाँ हाँ।
5: अच्छा गर्मी धान कितना में लगाए रहे?
6: तो ज्यादा में नहीं लगाए रहे, लगभग लगभग एक एकड़ में।
5: तो गर्मी धान में उतना रोग राई नहीं लगे?
6: नहीं लगे, उन्हें मतलब बायल में नहीं मरे, जिसे बरसात सीजन में ज्यादा मतलब बायल मरते हैं, तो अभी में जीरो फूल के बायल में नहीं मरे।
5: अच्छा तो जीरा फूल लगा रहे?
6: हाँ जीरो फूल लगा रहे, बाकी जीरा फूल लकारा कुछ दे।
5: अच्छा बीज में आरिस?
6: हाँ हाँ बीज में आरिस छोटा छोटा।
5: अच्छा।
6: जब वो तैयार हो कारा पाई तो झर गई।
5: अच्छा चलिए भाई देखिए प्रकृति के ऊपर निर्भर है खेती, तो
6: हाँ।
5: अब किसान जो है भगवाने भरोसे है
6: भगवान।
5: तो अभी गर्मी में जैसे मकई में कुछ कमाएं?
6: हाँ कुछ कमाएनों में।
5: तो हाइब्रिड रही?
6: हाँ हाइब्रिड में रही।
5: अच्छा तो अभी बरसात में फिर लगाब मकई?
6: हाँ लगाब।
5: अच्छा
6: मक्का इसे बरसात में मूली भी लगाते हैं।
5: अच्छा
6: और रहर भी।

0: भी खेती करथन, उर्दी भी खेती कर लेथन।
1: वाह,
0: हाँ।
1: तो कुछ यंत्र भी रखे हैं, ट्रैक्टर वगैरह?
0: हाँ, ट्रैक्टर है।
1: हाँ, तो भाई ट्रैक्टर से बढ़िया जुताई हो जाते?
0: हाँ, ट्रैक्टर में बढ़िया जुताई, यही साल ले हैं ट्रैक्टर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। तो खेत की अभी तैयारी कैसे कर रहा था?
0: तो अभी सब जोत के अभी फिट कर रहा था। हाँ, अभी ओकर ऊपर में फिर घास उस मत जाम ही तेकर पर दावा मारल जाही, जो मक्का भी बुना चाहे तुहर वो मूली भी करब। एक बार घास के मतलब अभी उग जाए, अभी जोते होते में तेकर बाद मोला मार के और फिर जोत देबो तो फिर खत्म हो जाए बन। अब फिर गोटे एक दू गोट जाम ही तो मैं फिर दावा मारब, तो जो मूली जाम जाए उकर बाद में मारब, चाहे मक्का जाम जाए उकर बाद में मारब फिर।
1: बढ़िया, तो अभी मतलब खेत के जुताई चलता है।
0: हाँ, अभी
1: तो अभी देखा था बहादुर जी कि हाँ। अभी तो देखे बारिश पहले आ गई।
0: हाँ, तो अभी तो वो बारिश सर कामे कराई से, काहे कि वो घास जो गुदा झरे रहते बीज तेला जाम वो जाम जाही और जोत देबो तो फिर गाँव जाम जाही, फिर दावा मार देबो तो खत्म हो जाही बंद।
1: तो हाँ। बढ़िया, तो ये साल मानसून के क्या अंदाज लगत है?
0: तो मानसून तो भाई अब एक आषाढ़ बिना खेती यहाँ हो नहीं पा रहे। हाँ, एक आषाढ़ में जब पानी मान थनी है।
1: अच्छा।
0: अभी तो इलाकराशिये माना थन, ये जाम पाके बार, डोरी पाके बार, आमा पाके बारा ये पानी है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और जो खानी छानी छपर माला खपरा वाला ला बजराई वाला है अभी उधन ही, एक बार फिर छवाही तो खपरा थोड़ा सा पानी पास है तो वजन हो तो नहीं उड़ाही हवा।
1: अच्छा। तो अभी जैसे मतलब ये बारिश ठीक हुई?
0: ठीक हुई सर।
1: बढ़िया ना, तो ऐसा उम्मीद है कि भाई बारिश ठीक हुई, लेकिन वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई कम तनिक बारिश हुई वो तक हाँ। बढ़िया नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो मन सलाह ये देते हैं कि भाई कम धान के अवधि लगा जाए। चली और तो अब जैसे बताइए उसे करब, लेकिन कौन कौन सा धान लगा था अभी खरीफ में?
0: तो अभी तो ज्यादा मोटे धान मतलब लगा थन,
1: हाइब्रिड।
0: हाइब्रिड?
1: अच्छा, मोटा कहे लगा थन?
0: तो बेचे के लाई गाँव कूद भाई सोना मुनम खायो पर लगाए ले थन।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: हाँ।
1: तो बहादुर जी एक बात हमन देखा थन कि जो हाइब्रिड हमन खेती करा थन उनमें लागत ज्यादा है, रोग राई ज्यादा है का?
0: तो लक्ष्य दावा बीरो तो जरूरी है मारना समय समय में, वो जब रोग नहीं पकड़ रही तब से मारना पड़ते।
1: अच्छा, बीज उपचार करते हैं किसान भाई मन? बीज उपचार?
0: हाँ, कर लेते हैं कोई कोई। वो जैसे हाइब्रिड मतलब तो नहीं, जैसे वो आ रही 64 R 36 एमन मतलब कर लेते हैं।
1: हाँ। बढ़िया बढ़िया।
0: हाँ।
1: तो भाई बीज उपचार करे से क्या होता है कि तनिक रोग राई कम हो जाते है?
0: कम हो जाते है। अभी जैसे जो फसल काट के
1: हाँ।
0: जो धान कोई रखी यो आ रही 64 इमन मला वो आ रही 36 मला
1: हाँ।
0: तो इमन ला नमक पानी मतलब ये बोत के और बढ़िया सुखवाए के और रखल गई से है।
1: भाई बीज चयन करके तो यही हाँ, तरीका
0: तो
1: है।
0: मैं कहे के मतलब कि धान के जिसे आदमी के टीका लगते ना बच्चा में एक टाइप का रो टीका लग जाते।
1: बड़ा बढ़िया बता कि भाई पहले तो भाई
0: हाँ।
1: नमक पानी में डुबा के बढ़िया धान ला निकाल लेते
0: निकाल ले।
1: बीपी भी जो उपचार करके लगाने लगाए से तनिक रोग कम लाग
0: कम लाग।
1: बढ़िया बताए रोडे। तो अभी जैसे अभी हमन देखा था कि भाई यूरिया DAP खाद तो हमन डालवे करथन।
0: हाँ।
1: और हम देखा था कि हमार जमीन जो है खेती कर कठोर हाँ। होता है।
0: हाँ।
1: और कठोर हो से देखिए तनिक मनिक बंजर भी होता है धीरे धीरे नहीं।
0: हाँ।
1: तो ये जो गोबर खातू है कंपोस्ट खातू है एकर का महत्व है और किसान मन कैसे करत है?
0: तो उतना तो अब वो गोबर हो नहीं पाता है, पशु पाले नहीं सकते है। तो जगह में कुछ पोटास भी हल्का हल्का सबे भी खाद डाल जाते। हाँ। तो नहीं जमीन उतना बजर नहीं हो, एक एक खाद लग के दही जैसे तो जमीन बगड़ा जाते, पोटास उतास डाल दही तो थोड़ा सा कुंवर हो जाते।
1: हाँ। तो मैंने जो गोबर खातू डालना थोड़ा जरूरी है?
0: हाँ, जरूरी है, बाकी अब गोबर उतना नहीं हो पाए पूरा खेत में।
1: तो पहले पशुपालन ज्यादा रही इसका?
0: हाँ, पहले ज्यादा रही, तो परिवार मान अलग तलग नहीं हो तो जो दो भाई आए तो एक भाई चराते रहे, ओसरी पारी चाहे घास भी काटत रहे। अब भी अब ज्यादा जमीन में अब खेती बाड़ी भी होती, अब जगह भी नहीं है चराए भर, और आज चार के लेकर मन गोरू फिर चरावे नहीं करे।

0: नहीं एकर चलते अपन नांगर एक नांगर ही का सब रखल जाते
1: हाँ,
0: एक नांगर के अब गोबर कितना हो ही
1: हाँ, गोबर के भी संकट है नहीं
0: संकट भी है
1: ठीक बता हाँ, कि भाई पहले तो गोबर भेटात रही
0: भेटात रही बाकी अब भेटा है।
1: अच्छा इधर इधर सोसाइटी में देखा था कि कम खातू देते हैं
0: तो कम तो देहाता है हाँ, अब मोला देही से खाद मतलब 15 एकड़ जमीन में 4 बोरा DAP देही से 5 बोरा यूरिया देही से है और 5 बोरा राखर देही से है तो कैसे तोला 3 बार मिल ही हाँ, तो को जानी अब देख बार देही से अब को जानी मिल ही कि नहीं कि शासन का कर ही भाई का पता नहीं है।
1: तो वही कम देते जैसे अभी तो भाई लगे कि भाई अब जैसे जो स्थिति चलता है कि भाई हमारे देश में यूरिया और खाद
0: हाँ,
1: तो हिसाब से तो मन हर डराते कि देही कि नहीं
0: नहीं नहीं डर लगाता है कोई देही कि नहीं भाई अब नहीं देही तो खेतियों कम हो ही।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो भाई देखिए अब ये स्थिति है तो किसान भाई मन जो आए बढ़िया अपन समझ बूझ के खेती करें इधर
0: हाँ हाँ
1: कि भाई
0: हाँ,
1: का धान लगाना है
0: तो इन्हें अब ज्यादा थोड़ा सा कम खेती करना पड़ी अब कम खाद डालना पड़ी अब ज्यादा खाद नहीं पूरी तो कहाँ से धान हुई तो कम ही खेती करना पड़ी दूसरा दूसरा खेती कहीं कचरा सचरा मतलब तोड़वाना पड़ी पान पथोर्रा मतलब हाँ पैरा मला मतलब जो बाँचा थे लेस देते मतलब जब गड्ढा खन के वो मतलब सरवाना पड़ी
1: हाँ, बड़ा बढ़िया बात बताए कि भाई जितना कचरा थे वो कि हमन कंपोस्ट खाद तो बना सकते हैं तो सरकार भी यही चाहते कि हमन थोड़ा सा जैविक खेती हाँ, की तरफ थोड़ा मोड़ी ज्यादा नहीं
0: हाँ,
1: लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जैविक खेती है उसकी तरफ हमन खाद केंचुआ खाद है हरा खाद है कंपोस्ट खाद है नडेप खाद है गोबर खाद है तो ये सब के प्रयोग भी करी
0: हाँ,
1: काबर की हमन देखा था कि भाई हमारे स्वास्थ्य भी प्रभावित होते खाली खातू खातू के
0: हमन ये खातू हाँ
1: तो क्या सोचते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य का असर पड़ता है
0: भाई में बहुत ईसन हो जाता है असर पड़ता है भाई भाई अब खाद गोबर मतनी है अब गोरु बछरू अब राखे नहीं सका सेवा नहीं हुआ था तो मैं तो आपसे थोपता है जब ले खातू खाद में पूरा नहीं डाली खेत में तो धानो भी नहीं हो खेती नहीं हो अब हर चीज में मतलब रासायनिक खाद और गोबर भी खाद जरूरी है
1: और रासायनिक खाद है तो कई तरह के समस्या भी होते
0: समस्या भी हो जाता है जब सरकारी खाद डाला तहन हाई वाला था तो जब सरकारी दवा चलते रही तो बचाऊ हुआ था वही में सुई गोली में जा से पैसा
1: तो भाई चारों तरफ सोचना पड़ते नहीं
0: हाँ हाँ
1: तो किसान के चारों तरफ से सोचना पड़ता
0: सोचना है तो अभी स्मार्ट कार्ड बनी से है तो स्मार्ट कार्ड अब वहाँ हॉस्पिटल में अब रहो तो वहाँ
1: बिल्कुल तो भाई स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना है जमीन के भी स्वास्थ्य के ध्यान रखना है तो किसान के ऊपर चारों तरफ से दबाव है
0: दबाव है
1: तो बड़ा बढ़िया रोरे गोठियाए और रोरे से गोट बात हुई
0: हाँ
1: तो ये गोट बात पर राउर के बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी जी धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ, अग्निव्या ये संदेश ला सुने कर पहले जो है जन किसान भाई से मुलाकात भी करें। बेराहचली से मंडी भाव बताए कर आज अंबिकापुर कर मंडी में गेहूँ रहीस 3,400 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रहीस 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, चना रहीस 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, अलसी रहीस 5,600 रुपये प्रति क्विंटल।

0: तापमान कर बात करल जाए तो आज कर अधिकतम तापमान रही 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 18 डिग्री सेल्सियस। कल कर भी अनुमान है इसने कि 30 डिग्री सेल्सियस रही अधिकतम और 19 डिग्री रही न्यूनतम।
1: अब ये सवाल जब आपको गोट करो तो बीते दिन हम जो सवाल कर रहे हैं कि फूल कर खेती में का सावधानी बरतना चाहिए, तो एक बात यही है कि जवाब यह है कि अच्छा उर्वरा युक्त भूमि रहना चाहिए और पानी निकासी कर बढ़िया व्यवस्था हो। एक जवाब ललित भेजी ने धौरपुर कर जो हम नियमित श्रोता हैं किसान भाई भी हैं तुषार पांडे,
0: इनके भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब भेजी ने। और हमारा आज कर सवाल हवे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए कर कोई भी 3 ठन लाभ जो है रौरे मंडा लिख के भेजना है, जिनकर सही जवाब हो उनकर नावला हम अपन कार्यक्रम में जरूर शामिल करब। तो भाई आज कर हमार किसान वाली अतरे।

0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: हाँ तो अग्नु भैया देखी चौपाले भी विद्यता लेह कर बेरा हो चली से तो किसान भाई मन लखब अपन ध्यान करें लड़का छे वो सियान सब कर ध्यान करें विदा लेहल जाए और कहल जाए
3: राम राम, राम।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे। और अब श्रोताओं, पेश है आप सभी का पसंदीदा और बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जिसका नाम है इंस्टा फरमाइश।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को कल्पना सेना का नमस्कार। श्रोताओं, इंस्टा फरमाइश वो कार्यक्रम है जहां दिलों की धड़कनों को मिलती है संगीत की मधुर आवाज। इंस्टाग्राम पर भेजे गए आपके प्यार भरे संदेश, शुभकामनाएं और गीतों की फरमाइश लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। मैं हूं कल्पना सिन्हा और अगले कुछ पलों तक संगीत के इस खूबसूरत सफर में आपका साथ निभाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली फरमाइश। सबसे पहली फरमाइश हमें मिली है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण की। बेलाडिला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास ओम ओमिन और उनके साथ ही उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती राव बेलाबाई सिंह विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह। बोलसरा नैला से हमारे साथी हैं प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू। चक 5 एमडी पत्रोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल अंकुर जनागल इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू ज्योति ठाकुर ग्राम चरौदा बाड़नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश। ग्राम पंचायत डुमरिया पोस्ट भटगांव जिला सूरजपुर से हमारे साथी हैं फुलेश्वरी धर्मजीत जीतराम सुरेंद्र कुमार आरती यादव नितिन यादव हिमाक्षी यादव महेंद्र कुमार मोहरमनिया और उनके परिवार के सदस्य। लचनपुर से विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति साहू। डमडम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा और रेखा

श्रोताओं, कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोकेलाल वर्मा, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से इंस्टा फरमाइश भेजी है पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, रायगढ़ से रोहित जय लक्ष्मी, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इंस्टा फरमाइश की है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो ये रही श्रोताओं आपकी इंस्टा फरमाइश आपकी नजर।

श्रोताओं, कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का गीत। इस गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इस गीत के लिए इंस्टा फरमाइश भेजी है ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति ग्राम कालापारा सरगुजा से, रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, खेलसाय मरकाम, नैन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, नोहर साय राजवाड़े, कविता मरकाम और आरती मरकाम। मुंडा टोला डोंडी लोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेगलानी, बबीता मेगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। रावर करनाल से हमारे साथी हैं

विनोद लखनपाल, अमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर से हैं। मुनीश राम, शालिनी रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और उनके परिवार के सदस्य, ग्राम बगबुड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले पायदान पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आदमी खिलौना है का गीत। इस गीत के लिए इंस्टा फरमाइश भेजी है सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेड़ साय श्री भगत हेमंत कुमार राम खिलावन सिंह पैकरा ग्राम पंचायत परसा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश राजवाड़े यमिया राजवाड़े आदिया राजवाड़े पार्थ राजवाड़े और उनके परिवार के सदस्य सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता दले अनिकेत दले रोहिणी दले ऋषिकेश दले जीविका दले सानिका दले पूनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा सोनवने अविका सोनवने और विशाखा सोनवने राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार संदीप कुमार पांडे कृष्ण कुमार चित्रंजन यादव सुनील कुमार तेज कुमार साहू रविशंकर राजवाड़े मनीष कुमार साहू मंगेश्वरी भास्कर कविता मांझी सेवता कुलदीप और सुचि कश्यप ग्राम दुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद कुमार साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू और युवराज साहू ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अबान अब्बासी और उनके परिवार के सदस्य दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे साथी हैं मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और बेरडी से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची और तनु करमरकर। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है फिल्म आदमी खिलौना है का ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है खुद गर्ल्स। इंस्टा फरमाइश भेजी हमारे इन श्रोता साथियों ने। सांगली जिले से अल्ताफ हजरी, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख, रामस्वरूप आनंद सरजाल जोड़ा पिपल अंबिकापुर से, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से, अरुण कुमार मालवीय दर्द, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी, ड्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा ट्विंकल तुलसी और दिशा गोस्वामी, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथी हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू ईशु बाबा, सपना शिवी सलोनी, अनय अनाया और पेंटर बाबू, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेबवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और उनके परिवार के सदस्य, और संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत कमल साहनी, पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म खुद गर्ल्स का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है अनाड़ी। भिलाई छत्तीसगढ़ से इंस्टा फरमाइश की है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, मजनू का टीला जी, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाड़े और ग्राम टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका वाणी थांदी। सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का ऐश्वर्या, प्रीतम मनोज और मिथिलेश यादव, पद्मा टॉकी नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, ऊंचगांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार, कलनौर से

सुरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मैंग शर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया और अनस और रेहान, आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा।

और अब श्रोताओं, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म धरती का गीत। सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। ग्राम कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी प्रयाली और उनके साथी। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के और गायत्री घोड़के। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बुरगांवकर, सुषमा बुरगांवकर, प्रांजलि सोहम बुरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट, अंशुमन और बेबी ओवी। कस्बा उघैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। गड़िया मौजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी और आरती कुमारी, सुनीता देवी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया। साहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन मनवर, रोशनी मनवर और उनके साथी। सेक्टर 18 जगाधरी से जिला यमुनानगर हरियाणा से हमारे ये साथी हैं विनय मोहनखार, वन मीनाक्षी और डॉक्टर ईशानी।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम समाप्त होता है। आज इसे आपके लिए पेश किया कल्पना सिन्हा ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा

0: विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है।

0: भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के

0: मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Centre launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and if

और अब चित्रपट संगीत के कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाजों में फिल्म पति पत्नी और तवायफ का ये गीत।

इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को कल्पना सिन्हा का नमस्कार। श्रोताओं, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं हमारे श्रोता साथियों के ईमेल पढ़ने का सिलसिला। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। प्रेममणि नाग से पूनम रानी सरकार, शैना देवी ठाकुर। लालबाग जगदलपुर से हमारे ये साथी हैं। रायगढ़ से रोहित जय लक्ष्मी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से हैं हमारे साथी विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, सपना, शिवी सलोनी, ईशु बाबा और पेंटर बाबू। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से ईमेल भेजने वाले हमारे साथी हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार। जी के परमार गांधीनगर गुजरात से हैं। अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय। दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। सत्येंद्र कुमार चंचौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंचौलिया, ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं आप सभी के ईमेल पर ये गीत।

0: श्रोताओं, बब पिलायरी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म डिस्को डांसर का गीत। संगीत निर्देशन था बप्पी लाहिरी का। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार।

0: संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा माँ चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म मुद्दत का गीत। ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन, सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, ग्राम पुतकी कवरदा छत्तीसगढ़ से, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, मीरा सिंह, ज्योति सिंह, अनामिका सिंह समस्तीपुर बिहार से हैं, जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल, रावर करनाल से हमारे साथी हैं ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक अनारकली बाजार जगराव से हैं आप, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।

श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल की गुंज इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिरी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का गीत। शब्द रचना इंदिवर की है और संगीत निर्देशन बप्पी लाहिरी का है। ईमेल भेजा है हमारे इन साथियों ने, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सदस्य, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, ग्राम धुर्राबाना भाटापारा से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज गिरिडीह झारखंड से, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, ग्राम सिदमा बाजारपारा जिला बलरामपुर से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, रामभरोस पैकरा, नरेश सिंह और उनके परिवार के सदस्य, संबलपुर कांगेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से हैं, ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल यादव और अनुसुईया यादव, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु रिशु, हमारे ये साथी हैं धनोरा बस्तर से, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर ग्राम चरौदाबाड़ नवापारा से हैं। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सभी के ईमेल पर फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का गीत, जिसमें आवाजें हैं बप्पी लाहिरी और आशा भोसले की।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल जले का गीत। आवाज है कुमार सानू की, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत निर्देशन अनु मलिक का है। सुनना चाहते हैं मिठू बड़ा चौक, रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई जी, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रामभड़े, भारती रामभड़े, जानवी रामभड़े, वैष्णवी हर्षल रामभड़े, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेवा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, हमारे ये साथी हैं लोरमी ग्राम चचेड़ी से, मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सारिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शाराब खत्री, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़ी वसंतराम और उनके साथी, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अनविका तनुश्री और पीहरा बाजार झुमरे तलैया गिरडी से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू और बसंत लाल साहू।

दिल जले का गीत सुना। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी और संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल की गूंज अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
0: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूडियाट्टम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूडियाट्टम, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Mulikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Mulikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Mulikulam Nepatya Kodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarb Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarb Divya Pashupata Astra Ki Prapti Ke Liye Pandavon Mein Arjun Bhagawan Shiv Ki Kathor Tabasya Aur Aradhana Karte Hai. अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके

0: आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Sri Margi Mathu. Kiradam, author, Melputur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, sangeetakar, choral arranger tatha vocal coach hai. Ve Akashwani ke A grade kalakar bhi hai. भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocals.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक You were listening to a presentation of Malayalam Light Songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K.X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C.N.K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, We come to the end of today's national program of regional folk and light music.

0: program was recorded in the studios of Akashvani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला

0: and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10.25 हुए हैं। हमारी आज की तीसरी और अंतिम सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।